0: नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईदुल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर

0: पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

London. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, आज के इस खास दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी को नमन करते हुए जिनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती है। उन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना गया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और समाज सुधारक जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंडमान सेलुलर जेल की कठोर यातनाएं हो या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचार, वीर सावरकर का जीवन संघर्ष, साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा। उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता की बात नहीं की बल्कि समाज में फैली भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। तो आइए उनके विचारों और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी दूर गगन के छांव में। और दोस्तों, आकाशवाणी के 90 साल, आकाशवाणी जब गांव-गांव तक पहुंचा, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा रेडियो जो गांव को दुनिया से जोड़ देता था। जब शहरों में खबरें बन रही होती थी, तब आकाशवाणी उन्हें सीधे खेतों तक पहुंचा रही थी। किसान अपने दिन की शुरुआत मौसम के बुलेटिन से करते थे और उसी आधार पर तय होता था कि बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है। रेडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता था, यह सही निर्णय लेने की समझ भी देता था। दूर दराज इलाकों में जहां संसाधन सीमित थे, वहीं इसके शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के लिए चलती फिरती कक्षा बन जाते थे। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह, टीकाकरण की जानकारी और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाते गए। और इसी कड़ी में एक अहम पहल हुई, 17 नवंबर 1959 को रेडियो रूरल फोरम्स की शुरुआत। इन फोरम्स में गांव के लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुनते, फिर उन पर चर्चा करते, कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके और ग्रामीण जीवन से जुड़े मुद्दे इनका केंद्र होते थे। इन चर्चाओं से निकले सवाल और सुझाव आकाशवाणी केंद्रों तक पहुंचते और अगले प्रसारण में उनके जवाब दिए जाते। यानी यह सिर्फ प्रसारण नहीं था, बल्कि दो तरफा संवाद की एक मजबूत कड़ी थी। और जब बात मनोरंजन की आती तो यही रेडियो बन जाता था पूरे गांव का मंच। गीत, नाटक, लोक संगीत, हर आवाज में अपनी मिट्टी की खुशबू। आपातकाल हो, युद्ध हो या हो प्राकृतिक आपदा, आकाशवाणी ने हमेशा सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचाई। आज भले ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन जो विश्वास रेडियो ने बनाया वो आज भी कायम है, चाहे वो गाँव हो या शहर।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म थी प्रोफेसर।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: और अब हम बात करेंगे एक ऐसी असाधारण महान भारतीय वैज्ञानिक की, जिनकी मेहनत ने पूरे देश की जिंदगी में मिठास घोल दी, डॉक्टर जानकी अम्बाल की। वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। एक ऐसा समय जब महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और शोध के रास्ते लगभग बंद थे, उस दौर में उन्होंने न सिर्फ ये मुकाम हासिल किया बल्कि इतिहास भी रच दिया। उन्होंने साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में गहन शोध किया और इसी शोध ने भारत को एक बड़ी सौगात दी। डॉक्टर जानकी अम्बाल ने गन्ने की एक ऐसी किस्म विकसित की, उसमें बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अधिक मीठी थी और जिनकी उपज भी बेहतर थी। उनकी इस खोज ने भारत की आयात पर निर्भरता को खत्म करने में मदद की, लेकिन उनका योगदान सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं था। उन्होंने बैगन और मैग्नोलिया जैसे पौधे की भी बेहतर और अधिक उपयोगी किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिससे खेती के साथ साथ सजावटी पौधों को दुनिया को नई पहचान मिली। सोचिए, हमारी चाय की हर चुस्की में, हर मिठाई के स्वाद में और खेतों की हर हरियाली में, बगीचों की खूबसूरती में उनकी मेहनत और समर्पण शामिल है। वो विदेश गई, वहां अपने शोध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी विरासत को सचमुच चीनी के हर दाने में छोड़ गई। उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे देश की अग्रणी वनस्पति वैज्ञानिकों में शामिल हुई। एक ऐसी वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ पौधों का रूप बदला बल्कि देश की दिशा भी बदली। डॉक्टर जानकी अम्बाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ज्ञान की शक्ति से एक व्यक्ति पूरे देश में बदलाव ला सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी में थोड़ी सी मिठास महसूस हो, याद रखिएगा उसमें एक भारतीय महिला वैज्ञानिक का सपना भी घुला है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म खट्टा मीठा से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी आईना बनती हैं तो कभी सहारा। तो आज बात तीन ऐसी ही खूबसूरत किताबों की जो दिल और सोच दोनों को छू जाती हैं। तो पहली किताब है अक्टूबर जंक्शन, लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। यह कहानी है उन रिश्तों की जो सही वक्त पर पूरे नहीं हो पाते। प्यार, दूरी और अधूरी मुलाकातों के बीच चलती ये कहानी बहुत ही सादगी से दिल को छू जाती है और ये हमें सिखाती है कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बस थोड़ा सा बेहतर इंसान बनाकर चले जाते हैं। दूसरी किताब है मुझे चांद चाहिए, लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। यह एक महत्वाकांक्षी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों और पहचान के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। यह उपन्यास सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक स्त्री की इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने की गहरी पड़ताल है। और यह किताब हमें सिखाती है कि सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पाने की कीमत और जिम्मेदारी समझना भी उतना ही जरूरी है।

तीसरी किताब है आपका बंटी, लेखिका है मन्नू भंडारी। एक छोटे बच्चे की नजर से देखा गया टूटता हुआ परिवार। बंटी की मासूमियत और दर्द रिश्तों की सच्चाई को बेहद गहराई से सामने लाता है और यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लोगों के फैसले जो होते हैं अक्सर बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो कभी प्यार अधूरा रह जाता है, कभी सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है और कभी रिश्तों की दरारें मासूम दिल को छू जाती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो सिर्फ वक्त न बिताए बल्कि आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और संवेदनशील बना दे, तो ये तीन किताबें आपके लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद के इस पाक मौके पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों ढेरों मुबारकबाद। दुआ है कि आपके जीवन में खुशियाँ, अमन और बरकत हमेशा बनी रहे।

सुंदर से लता मंगेशकर को फिल्म थी बरसात की रात। और दोस्तों, बंगाल की मिट्टी से जन्मी कांथा कला समय से परे एक ऐसी परंपरा है जहां पुराने साड़ियां, धोतियां और कपड़े फेंके नहीं जाते बल्कि सहेजे जाते हैं। इन कपड़ों की कई परतों को एक साथ रखकर साधारण रनिंग स्टिच से सिला जाता है और यूं बनती हैं खूबसूरत रजाइयां, दुपट्टे और कपड़े जो सिर्फ वस्त्र नहीं भावनाओं का ताना बाना होता है। और कहते हैं कि इस कला की जड़ें बहुत पुरानी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध के अनुयायी भी त्यागे हुए कपड़ों को

लेकर अपने दैनिक उपयोग में लाते थे, यानी सादगी और पुनः उपयोग की यह परंपरा सदियों पुरानी है। और समय के साथ इस कला में केवल टांके नहीं लगे, कहानियां भी जुड़ती गईं। पौराणिक कथाएं, कमल के फूल और तरह तरह के फ्लोरल और ज्यामितीय पैटर्न धीरे धीरे एक कपड़े पर पूरी एक कहानी, एक इतिहास, एक संस्कृति उभारने लगी। समय के साथ यह कला धीरे धीरे खोने लगी थी, लेकिन 1940 के दशक में प्रतिमा देवी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से थी, उन्होंने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। उनके प्रयासों ने कांथा को नई पहचान दी और इसे घरों से निकालकर दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया। इन डिजाइनों में सबसे खास होता है एक सतदल पद्म, 100 पंखुड़ियों वाला कमल, जो जीवन, सृष्टि और नारित्व का प्रतीक माना जाता है। हर टांका जैसे इस प्रतीक में एक नई ऊर्जा, एक नई भावना भर देता है। आज नक्शी कांथा को GI टैग भी मिल चुका है, जो इसकी विशिष्टता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का प्रमाण है। यह सिर्फ कढ़ाई नहीं, यह बंगाल की महिलाओं की आवाज है, उनकी यादें, उनके सपने और उनकी रचनात्मकता का जीवंत दस्तावेज। कांथा हमें सिखाती है कि जो पुराना है वो बेकार नहीं होता, कभी कभी वही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fangoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का रहेगा इंतजार।

अब हम सुनते हैं आशा भोसले को, फिल्म थी चोर मचाए शोर। और अब बात करते हैं कि ऐसे ट्रेंड की जो धीरे धीरे हमारे सबसे निजी खुशियों को भी कंटेंट में बदल रहा है। जी हाँ, बात हो रही है शादियों की। शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती, ये वो पल होता है जहाँ दो लोग, दो परिवार और अनगिनत भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं। लेकिन आजकल ये पल कैमरे के एंगल, रील के ट्रांजिशन और परफेक्ट शॉट के बीच में कहीं खो सा गया है। अब दुल्हा दुल्हन की एंट्री भी दिल से नहीं, रीटेक से होती है। हंसी भी असली नहीं, कैमरा ऑन है, स्माइल प्लीज वाली हो गई है। सोचिए, क्या हर आंसू, हर मुस्कान, हर रस्म सिर्फ इसलिए है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छी लगे? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि शादी लाइव जीने के लिए होती है, ना कि बाद में अपलोड करने के लिए। जब माँ की आंखों में आंसू हो तो वो पल कैमरे में कैद करने से ज्यादा उसे महसूस करना जरूरी है। जब दोस्त मजाक कर रहे हो तो उस हंसी में शामिल होना जरूरी है, ना कि बस उसे रिकॉर्ड करना। कंटेंट बनाना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन जब कंटेंट असल पल से बड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे होते हैं। याद रखिए, शादी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो दिल में रहती हैं, ना कि सिर्फ फोन की गैलरी में। तो अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं, थोड़ा कैमरा नीचे रखिए और उस पल को पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि कुछ लम्हे पोस्ट करने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग से। और अब हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जो शोर नहीं करती लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देती है। साइलेंट हेल्थ इश्यूज, जो बिना स्पष्ट संकेत दिए शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब तेज दर्द ना हो या कोई बड़ी तकलीफ ना दिखे तब तक सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं चुपचाप पनपती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड या विटामिन की कमी, इनमें शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, नजर ही नहीं आते। तो ध्यान देने वाले संकेत ये है कि लगातार थकान या कमजोरी, अचानक वजन बढ़ना या घटना, बार बार सर दर्द, नींद का बिगड़ना, त्वचा या बालों में बदलाव, ये छोटे छोटे संकेत है कि आपके शरीर का संदेश हो सकता है कि मेंटल साइलेंट हेल्थ इश्यूज। अब बात करते हैं मन की तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये भी अक्सर चुपचाप हमारी जिंदगी में जगह बना लेते हैं। तो पहचान कैसे करें? बिना वजह उदासी या खालीपन महसूस होना, पहले जिन चीजों में आपको खुशी मिलती थी उनमें रुचि का कम होना, नींद या भूख में बदलाव, तो क्या करें? अपने शरीर और मन के छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज ना करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा जरूर करें। याद रखिए, बीमारियां हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से भी दस्तक देती है। उन्हें सुनना, समझना और समय पर कदम उठाना ही समझदारी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी से। और दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की परफेक्ट छुट्टियां, किसी की फिट बॉडी, किसी की शानदार नौकरी, तो किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर अनजाने में हम अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक हाईलाइट है? असल जिंदगी में हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे असफलताएं, और हर परफेक्ट फोटो के पीछे कई बार अधूरी कहानियां। सोशल मीडिया हमें जोड़ता भी है, लेकिन कई बार यह हमें खुद से ही दूर कर देता है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है, अपनी कहानी होती है। तुलना करने से न हमारी राह आसान होती है और न ही हम खुश रह पाते हैं। तो थोड़ा रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जी रहा हूँ या जी रही हूँ? सोशल मीडिया को देखिए, लेकिन उसे अपनी सच्चाई मत बनाइए, क्योंकि असली जिंदगी फिल्टर के पीछे नहीं, आपके आज में बसती है। याद रखिए, तुलना का ये जाल जितना चमकदार दिखता है उतना ही उलझाने वाला भी है। इससे बाहर निकलना है तो खुद को अपनाइए और एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन। अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए, दूसरों की रोशनी में खुद को मत तौलिए। आपकी अपनी एक चमक है, बस उसे पहचानिए। नवीन भाटिया जी और गौरी शंकर जी, आपने मेल भेजा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।

अभी हम सुन रहे हैं पंकज उदास और साधना सरगम को, फिल्म है मुहरा। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं देते हैं विराम। मुस्कुराते रहिए, घर आंगन सुनते रहिए, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। डीजे मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

अथवा आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून

0: आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Varsha Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious

0: President's police color on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है, ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस फिल्म की जिसने रहस्य और सस्पेंस को एक नया अंदाज दिया। एक ऐसी फिल्म जिसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं और जिसका डर, रोमांच और रहस्य आज भी वैसा ही ताजा लगता है। जी हाँ, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है 1965 की मशहूर फिल्म गुमनाम। तो आइए सुनते हैं इस गीत का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज।

दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण किया था एनन सिप्पी ने और फिल्म के निर्देशक रहे राजा नवाजे। 24 दिसंबर 1965 को ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हिलन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वर नंस से प्रेरित थी, लेकिन खास बात ये रही कि फिल्म को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाला गया। गीत, संगीत, हास्य, रोमांस और रहस्य सब कुछ इतना खूबसूरती से मिलाया गया कि गुमनाम एक यादगार फिल्म बन गई।

0: तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है गुमनाम। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, गुमनाम फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें एक प्रतियोगिता जीतने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनका विमान रास्ता बदल देता है और वो पहुंच जाते हैं एक सुनसान द्वीप पर, जहां पर एक रहस्यमयी हवेली उनका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आता है कि कातिल कौन है। फिल्म की यही बात दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। उस दौर में इतनी रहस्यमयी कहानी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती थी। और अब बात करते हैं फिल्म के सबसे दिलचस्प किरदार की, यानी महमूद साहब की। फिल्म में उनका बटलर वाला किरदार डर और कॉमेडी दोनों साथ लेकर आता है। उनकी अजीब हरकतें और संवाद दर्शकों को हंसाते भी हैं और शक में भी डालते हैं। उनका गाना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं आज भी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

जगदारी जगदारी जाने जाने को

दोस्तों, अगर हुनम की बात हो रही हो और जान पहचान हो का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जान पहचान हो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में गिना जाता है। इस गाने में हेलेन का डांस इतना मशहूर हुआ कि सालों बाद हॉलीवुड फिल्म गोस्ट वॉक वर्ल्ड में भी इस गीत का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया था। उस दौर में ज्यादातर फिल्मों में परिवार, प्रेम और सामाजिक कहानियां दिखाई जाती थी, लेकिन गुमनाम में सस्पेंस और हॉरर का नया रास्ता खोला। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रहस्यमय माहौल बनाने के लिए सेट पर रोशनी और ध्वनि का खास ध्यान रखा जाता था ताकि कलाकार भी उस डर को महसूस कर सके। फिल्म रिलीज होने के बाद लोग इंटरवल तक कातिल का अंदाज लगाते रहते थे, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते कहानी ऐसा मोड़ लेती थी कि दर्शक हैरान रह जाते थे। मनोज कुमार ने फिल्म में गंभीर और समझदार किरदार निभाया। बाद में वे भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। नंदा की मासूमियत और अभिनय ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी और प्राण साहब हर फिल्म की तरह यहाँ भी रहस्य पैदा करते नजर आए।

दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपने मेल्स में कार्यक्रम के बारे में कुछ कहा है, तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। और ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अयुराज सिंह का। और ये मैसेज हमें भेजा है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्रीबाई देवांगन ने, और इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत भूषण, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, ग्राम पंचायत कालेगांव, जाफराबाद से। आप हैं अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और ये लिख रहे हैं कि आज गुमनाम के गीत और कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी और गीत सुनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को बड़े दिल से सुन रहे हैं। आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, समरील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता। गांव नथर पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी जिला हिसार से। और ये है सुरसंगम रेडियो श्रोता संघ से, इन्होंने पूरी जानकारी फिल्म के बारे में दी है। आप हैं विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और परवीन सुल्ताना, जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, गांव नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहब। और आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हाथी से। और ये मैसेज आप हमारे पास पहुंचा है डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया का। आपके साथ हैं तुषार देव, टॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, पीटीआई संसद मार्ग

से अनिल मोहन और नलिकेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नवाडकर, निर्मला नवाडकर और सोपान तायड़े और नारायण इंगले। स्वर्ण सिंह गिल गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। गुमनाम उस दौर की सफल फिल्मों में गिनी गई और आज भी इस हिंदी सिनेमा की बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों में शामिल किया जाता है। इसके रहस्य संगीत और कलाकारों ने इसे अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म की जिसमें गुमनाम आज भी जब उसका संगीत बजता है तो या टीवी पर दिखाई जाती है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे यानी अक्सर गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक सही

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के प्रेस चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे। होंगे फौजी वीरा ने कुछ और किता देना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तई ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है, नायब वजीर आला डी के शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुस के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के

0: गर्ल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनकदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और खासतौर पर ख्वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेजी लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वादावन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निजाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी ताबुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निजाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तिहान के लिए अजसर-ए-नौ जांच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि बाज मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अजसर-ए-नौ जांच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि ओहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल जरूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदेही को बरकरार रखा जाए। बच्चों

0: ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असामाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लियामानी उमूर के वजीर एच के पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि डी के शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक अमरीकी फौज और उसके तजारती जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नजदीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी जिला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। डीजीपी राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डी के शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
1: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally, said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today, with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riku Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Viditsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures the resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ।

0: आपको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और

0: विदेशी मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहाद।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्यौहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90%

0: की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस्ट चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की, जिसकी मासूमियत, चुलबुलापन और खूबसूरत मुस्कान ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में सादगी और मुस्कान में अपनापन।
2: आकाशवाणी दिल्ली कना नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम पिन मीडियम आकाशवाणी कारगिल नक्सपू ये तुसुक निजन फेसुक एन सी आर टी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मजद उमंग

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन

0: करना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
0: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
0: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
0: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
0: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, इसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
0: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
0: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
0: जी।
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
0: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
0: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए।
4: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
3: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।

0: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
0: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखू तो।
1: हाँ।
0: माँ माँ माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
2: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
2: ऐसे नहीं,
3: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
0: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
0: माँ,
2: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
2: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
4: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
4: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
4: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
4: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
5: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और

0: नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
1: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
2: जी साहब।
1: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
2: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: यहाँ भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा

0: मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दरअसल NCERT स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यानी उमंग मीडियम वेविका अचय आकाशवाणी कारगिल न आकाशवाणी दिल्ली का न उर्दू सर्विसी प्रोग्रामों न रिले बेत रिले लड़ंग बाजत

मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर होंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे

से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकात के तई ज्यादा हसास रवैया अख्तियार करें। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबनाए हॉर्मोज के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। भारत और चीन की सरहदी उमूर से मुतालिक सलाह मशवरे और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 35वीं मीटिंग में दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आज मुल्क और बैरून मुल्क में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के अलावा सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में मुनक्दा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरक की 30वीं रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज आवाम और खासतौर पर खवातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निपटने की गरज से हमेशा तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निपटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज्म व जब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला मुल्क का आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाजाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वानदा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतज को यकीन

सुना सुना फिल्म थी हिना। अब सुनिए सुमन कल्याणपुर और

दरअसपैंते आकाशवाणी दिल्ली का न उर्दू सर्विसी प्रोग्राम लंगेनुत्पिन मीडियम वेविका अचैस आकाशवाणी कारगिल नजरिनुत वक्सपोतुसुत जबिसंसु कसत आकाशवाणी दिल्ली का न संदेश टू सोल्जर रिले बेत रिले लडंग बाजत

नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं। लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है।
0: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये नल मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चले। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था। मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे। वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है। और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन

0: कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी की बात है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए, यहाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और को छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब अपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था, खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो

0: नींव रखी जाती है बचपन में वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा। सीआरपीएफ में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में तो वहां पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकल्केट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी जी
1: जी, तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट के की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी

0: इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है। और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेजों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना। क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो

0: मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहां पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया उन दिनों। मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी। तो एक काफी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल में कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज के दौरान किया है।
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है, या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी

0: मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का पीआरओ भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में. उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला. मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ पीआरओ की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला.
1: वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे.
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी. वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी. तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था, उनके अधिकारियों से स्टूडियोज. लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ. मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ.
1: क्या बात है. चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसे कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं. और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम. अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे. तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
0: निसंदेह ये होता था. एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था. तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे. तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें. तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ. और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं. तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था. और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे. और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की. तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के. सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है. आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है. और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला.
1: क्या बात है. जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है. उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है. क्या ऐसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं. आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में. एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर. आप एक सोल्जर हैं. आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है. तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए. तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है. आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है. तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक

0: अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ।
1: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो

0: उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीत माला लेकर आते थे, और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई, और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने, अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا

0: Dari sapayan tespurgi khabarun langyan inut pin medium wave kang aces akashwani kargil nazar inut waks potus soto gani menit sumju sonsuk kasata program yan mazat terdeluksi hago program yang hago tangkan pin Dr. Gulzar Hussain.
1: My expertise in natural product medicinal chemistry zirna era zirna ngati jo ngati natural product ot jo ngati medicinal plant yot ngati aspas la to uduni bari ne kana research bachain dhyan una chemical compounds thing se to ngati de kana ngati tamsik jo disease hai unke duni fila ngate do apply bat pe ran zirna de field pe anuk de expertise ot aur ha natural plant hamare aspas mein kitne bhi importance hai dun game bare ngache detail se study bal kalo sabse pehle era zarna du english term mein jo natural product matlab bhi era zarna jo chemical compound zakhanchi shi onchi this man zarna this man zar chin era zarna this man po ngati plants anuk ngati chamala su sana ngata bin chai era zarna तो उदू पहला गति जमाने अनुक गते उदू जड़ी बूटी तरह के गते यूज बचाएं पर आजकल गति जो लैब सा अनुक दी गति प्लांट सा गति दी जड़ी बूटी गते उदयन उन्हें केमिकल सुन गते फिंग से दो गते ऐसे दवाई तरह के गति मार्केट गते सांचें ये नजर ना गा जरा नजर चिन की गति दी मेडिसिनल प्लांट उन गति इन्वायरमेंट अनुक गति आसपास ही सराउंडिंग है लोग बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हो चाहिए ना जरना तो दी चीज पो नाता दी इम्पोर्टेंस पो नाता शेष पर कोशिश मकसद अब सर्वाइव छाना का तो नती सबसे बढ़िया चीज की उद्यान जो केमिकल वो दी प्लांट से नंगो से आयो दी केमिकल उन बहुत अलग तरीके से दन हो चाहिए ये ना जरना तो उद्यान तो नाता अलग अलग उदनी जो पोटेंसी जरना संग कोई दे कौवत पो जरना संग बहुत स्ट्रोंग हो चाहिए केमिकल कौवत पो साथ ही साथ नती प्लांट सुन कुलिया कुलिया ग्रो छा चाहिए लद्दाख रीजन ने दे ड्राइनेस की वजह का मतलब कुलिया कुलिया ग्रो छा चाहिए दे वजह का कोई देशमानी कैपेबिलिटी जरना जैसे रेजिस्टेंस जरना या कोई देशमानी फन मी कौवत पो जरना संग कोई कुलिया कुलिया मना स्ट्रोंग हो चाहिए दे फिला यारा जरना गता सबसे अल्लाह ताला शुक्र बार रोशन की गति दी केमिकल पो जो प्लांट्स आयो उदी एक्टिविटी बहुत स्ट्रोंग हो चाहिए मेडिकली मेडिकली गते बायोलॉजिकली टाइम गतो जरना गतो कोई एक्टिविटी मना स्ट्रोंग हो चाहिए यारा बिल्कुल दे सो गति सबसे इंपॉर्टेंट गति लद्दाख खुरियान या कारगिल नल्ताना तो गति सिबक थोनी सोम सिंह गता आदि ने दुख सबक थोन जरना जैसे सरमी पीलियां जेद का चीज सॉक्स्क्यूरा नजर तो दोनों गता सोम से इंपॉर्टेंस गता थोन जैसे कि मेडिकल दे ना मना जो सिबक थोन या जो गति सरमी पीली मना बहुत ज्यादा डिमांड आयो तेरा गति इंडस्ट्रियली अल्ताना का तो क्योंकि खुयान हो चाहिए नेरा जरना गति बहुत सारे एंटी कैंसर दवाई जैसे कि उसमें अल्कोलाइड्स भी बहुत सारे हो चाहिए नेरा जरना या फ्लोवोनाइड्स जरखन मॉलिक्यूल का तो हो चाहिए दे मॉलिक्यूल ने यहाँ जरना गति बॉडी मन फन के यहाँ जरना तो गता एज ए गति फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल तना स्किन केयर फिलर दो ही फिलंग गति दी सॉक्सक्यूर्प मन यूज छा चाहिए बाकी गति देन वेट बहुत सारे विटामिन सा यूं चीन जिससे गति बॉडी मन फिट लो चाहिए यहाँ जरना तो दिया तो का गति लगा गति बुरसे हो जैसे बुरसी वेराइटी ना हो जिसको गति आर्टिमिसनिया जर्चिन इंग्लिश यानो किया साइंटिफिक नाम है आर्टिमिसनिया जर्चिन आर्टिमिसनिन कंपाउंड उदी नंगोस पे नो केमिकल चोंचिन क्विमिंग प्लस अर्चिन आर्टिमिसनिन तो दो गति तो जरमो फिला या जैसे कि गति चीची का दिन दायो एंटी डायबिटिक की हो या उदू उदू एंटी डायबिटिक फिला यूज छा चाहिए तो दिया तो करा गता गा यंग गति गति लछू जरत है जो लछू यनु गते उदिया होचिन गति रियम जरचिन लछू ला जरा जने साइंटिफिक नाम रियम जरचिन तो उदुला गते दिन उदिया होचिन कम देखिया केमिकल चोचिन दुला जरचिन इमोडिन जरचिन तो इमोडिन दे इमोडिन पो गता यंग एंटी इंफ्लेमेटरी गति बॉडीया खचिगा यल्तोआ जरमो यो तेया खचिगा छंपा कसम कसम छंपा दोन लय रहा ठीक छा छिने आदरना तो गति लद्दाख ही सबसे ढेर दमो ने रहा आजकल गति पूरा ओल्ड या इन इंडिया इन संग गता गति लद्दाख रीजन या नो काफी ऐसे मेडिसिनल प्लांट पे गता रिसर्च छेन होते रहा तो ताकि

0: कि ngata in nasan dare thik ba se du preserve ba se wo du yak paro shin ba se
1: बिल्कुल
0: bahari researcher dare ya nas last time bahut sare aise literature jaise review articles wagera ya sab publications wagera na silin
1: बिल्कुल
0: jisme zyada tar ngati Siru Valley naliyan nu na khon bahut sare medicinal plant ke bare mein already us logon ne detail se bataya bhi hai yara khon khon se dewa de ka las bas andu aur na particularly refill yanu kam as kam saal 8 saal ya 10 saal kai maine research kiya hai तो ध्यान उक्षी छंदु गया ना था अक्सर नति प्लांट से का नता मचंग माफाचिक थुमा हुमा इंदु के रहा मैक्सिमम जो भी माफात लेने दो बाहर पानी से लेने दो के रहा करना तो ना जरा दर्शन दी मेन प्रॉब्लम पर सोचने असर की यार ना था लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस जैसे कि हर कोई इंसान मतलब साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता या हर कोई केमिस्ट भी नहीं बन सकता है अतः गंगमा दी नॉलेज पोंगता ठीक बस मना लुशा मीन मगर अवेयर बांगा था यहाँ चाहे जैसे कि नते वर्कशॉप ची प्रोग्राम बैंगे चीन है ना स्कूल सगाई का या नती कम्युनिटी हॉल चा नते मी सगा दी अवेयर तंग वर्षिन
2: Dari sakpayentes program ngene nut pin nur deluksi hago medium wave ka aches akashwani kargil na sirinut kasatar sakmasut ke kangen mazat haji mohammad husain babis katyan
3: عريضة بخدمة حضرة صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم

بیو تم سامری کا بسن بلبل بیسے تو کی چھری کا

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सहअध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा

0: है बैट उसी को
1: मिलेगी। अरे यार
0: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारतीय मीमांग सुन्न यम्बो ग्रक्चा इन खुरी सिंह स्पेरन योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पो यम्बो नशिर बचाइन दो मनमा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईदू जगपजत योमी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।

0: खुशी मकाम ची कं खो खोटे लुशा जदुग लुशिन चुक और दूसरा खुआ इंटरेस्ट जर नु गेरा पढ़ाई खो स्टूडेंट ने ना खुरी पढ़ाई अनु इंटरेस्ट हो जमे चुक हाउस वाइफ ने खुई ना खुरी डेली बखने लस पे खुआ शोक यानी कि इंटरेस्ट खुआ स्टोरचेन चुक खुए शोक लुशा मेन चुक और लस बखन ची ना खुआ ड्यूटी का छसी ड्यूटी का सोसन लस बस यो जमे चुक से इंटरेस्ट पो खत्म छचा खुए अलामा चिक चिकिन यंग चिक चिक जेनु यरा गिल्ट फील छचिन गा लशी फ्यंग खोरंग ने खोरे खोरंग अरमन मत अब जा नरेज बस सोंग से चुक नरंग बत कसम दिन चुक ना दौर दे में खाने चुक जरे गा गा का मतलब परेशानी क्या गा नाकामी क्यों ना गा फेलियर क्यों ना गा नुकसान इच्छी क्यों ना खोरे रंग दे मुलायम बस ना नरी वजह का सोंग जरे काम खुरी का गिल्ट फील चेच चुक चाना दू चिक चीन बु यंग चिक चिक मन अलामा चिक चिक मोस्ट कॉमन डिप्रेशन युद्ध करने पेशेंट उन्हें दो अच्छी नहीं रहा स्नातो इंसान का तंग नलसे नलसे नंग ना बिंग चना गा मी की ना फ्रेश सोच सोच जिन यानी गा ला शिक्षा चना एक तो शोक नहीं बो एक्टिव नहीं बो एनर्जी नहीं बो खुश लस तो बा क्यूचिन क्वा लेकिन दे डिप्रेशन चकने म्यू स्नातो लांस ना फल ला को सुस्ती लुचिन सो यानी कि एक किस्म का लैक ऑफ एनर्जी जर्चिन गा ला शिक्षा नंग को चुस्ती नहीं बो फुर्ती नहीं बो बा मैन मा को सुस्त के को डल दिन मन लस मिलम चित हुआ जे देना ती ओदो सुख से का डलनेस को अनु पैदा चचिन सो गा ची शिक बे को शोक ने एनर्जी को यों जम लुशम सो और यंग दीर गब ने चिक चिक की मेंटल क्लाउडीनेस जचिन यानी कि स्टूडेंट का तो इन्ना या मसन यंग गा लस बखन चिन्ना खो कंसंट्रेशन डेवलप बा गा लाशी का खोए फोकस पो यानी कि तत्पो खो जगत ची का कंसंट्रेट बस दे लस पो दमो ने बो बे खो सलाहियत लुशमन सु चाना खो मेंटल क्लाउडीनेस जे देने मेंटल इल तत्पे अनु खो माइंड पे अनु क्लैरिटी लुशमन सु यानी कि एक किस्म का कंफ्यूजन चिलुशन सु चाना का ची शी का खो ज्यादा टाइम चिक दे के तवज्जो बे कंसंट्रेशन बस मसल सिलखा जी नकरी पढ़ाई का गो टॉपिक पो खो सिलिन न दो कोल दत पे छुट पे सा भी ओदे कंसंट्रेशन पो या लस बखन ची खरा ना खो देन लस पो बे कंसंट्रेशन दे के कोई ध्यान पोलुशन मन सु चाना दू लेक ऑफ कंसंट्रेशन जस चाओ डिप्रेशन या अलामा ची चिन बु और दोना डिप्रेशन या अलामा ची चिनो की खो तुक्षस पो जरे ज्यादातर पेशेंट पे तुक्षा मन कम तुक्षिन सु जान पो कम जासिन ओचिन सु खो बुक खत्म छचिन सु ता टाइम चले बना नॉर्मल मिल तुक्षिन नौजान टाइम का नौजान से तो दोजार टाइम का गौजान टाइम पुरान मना तीन चार पांच घंटा छाना इंसान लोक से बुजान चले तो खून आंधी तुक्षा कम छचिन सु और कुछ पेशेंट लजर तुक्षा बड़े हो छचिन बड़े ही छकने पेशेंट उन डिप्रेशन नीचे का मनी छचिन सु दोन मोटा छचिन सु ए जन कम जखन पजक बजक जक बजक खो कमजोर छिन छचिन सु खो तुक पमन जोर छमन सु जन कम जचिन सु जान खो कमजोर छिन छचिन सु तो दोनों यंबो यंबो यंग चिची कौन है अलामत चिची मने इम्पोर्टेंट पो स्लीप या ने कि नींद पटिक बसे यों चमें चुका नींद ताऊचा स्पो मसलन बार बार चंच किल चंच लग नींद छत्तन दुक्चिन चुक या चंच लग नींद यों मा गोरचिन चुक न्याले नंगंटा नींद सुम नींद मामलुशिन चुक गारे कसम वाहियात दे देंगे ख्यालात आलु से संभव आलु से वाहों में आलु से परेशानियां आलु से तन्मल लखल्टो में लुसुक वहीं मामलो छिंसुक या मसलन मत वक्त से कहीं छत छिंसुक या छान बार बार नहीं छत यानी कि गचुक से नसन खुआ नॉर्मल आराम ही दिंगित पो बाकी नॉर्मल पेशेंट लेमे सब नॉर्मल मिया यो में नित पो खुआ यो जमीन सुख लास्ट का नमो दी सक अलामा चिची यंग माना डिप्रेशन पो ज्यादा का तो खुआ योतना खचिया रंग न रंग शोक चासिंग यानी कि सुसाइड बसिंग यानी कि खुदकशी जरूरत नहीं थी ओदो बे ख्यालातंग खुआ खचिया यो चिंसु की मन दी जिंदगी चंग मजेक मिंदुक या दू जिंदगी खो जिंदगी मिंदुक जरे रंग न रंग खो स्ट्रोक स्केल भी यानी रंग स्ट्रोक चत भी और दून गंगवा अलामत उन डिप्रेशन पेशेंट ला ज्यादातर पो वक्ती नुकसान चो मन गेर सिख कुछ घंटा नॉर्मल ठीक छचिन लेकिन दी पेशेंट उन ला हफ्ता इंगीस बजे था लेते लुशिन टू वीक्स से ज्यादा खन लंग दिस डिप्रेशन जशिन बुय
1: दी ए चिगंग दुगा सर ngati phruni kana ya jawan chimi ga e chikana ngata dizer mon ngata yong atterna du tsuxyang
0: ampo ampo du tsuxin bu ki ngata insan la norogni tamiz lob se mazan proxs la ko sambe anu ko nafa ga in nuksan ga in ya dun sa ka duniya ti di matlab pareshani sa mamak michu cha chana khwa de chak cha jamen ngatas na jis ki ya past era ji galti galat fehmi ki agar ki ji nuksan chos na bar bar de samba mona depression mangmo do namza chana depression la kyuchin jis chana kho 20 15 20 saal lir gap na masan di anuk ko zyada tarpo case po mata thochin और छिमिया यो जिन खचिक जैसे कि ना जंजुस मन एम्बो मेत पा अपोइ खुरा जायो ना जंतन खचि मेत ना को सुन सु ग्रक पिस परा तंग मि जंजुस मन मेत ना

0: mali mushkilat chot na ya to na masan api kharchi ka po kharchi re fere duksyo nyambo so dukhan yo mamet to da chosla mali parashani yo khanchi man waqt matlab mudda chin ko masail chi hal macha zachat huncha se domba khanchi khami parashani yo khanchi depression chi chanzin chana khoyan chimi jawan sa ga jin ju kisi ko bhi ho sakta hai तो दी डिप्रेशन ही उम्र में खास देने के ऊपर
1: में कैसा सर फ्रूट्स आ गए जाम
0: फ्रूट्स ना कम होते हैं कैसा
1: अंगाते दी जर्मन मियों जिक फिला अंगाती जवान यंग अंगाती चिमी यंग मियों अंगाती फ्रूनी का ना ना स्टार्टिंग अंगाते दी जर्मन मियों जिक फिला अंगाते अंगाती आता अमाइ यंग अंगाते ना युद
0: सुनसे ना खुआ माहौल पर दमो होते कुछ
1: मेंटली हेल्प पर गया बस मैं ना
0: इमोशनल बॉन्डिंग पर आता ना वो अमन है वो बस ना खुआ ना जंजोस ना वो खुए का बचपन है खुए का ट्रॉमे गया ना गा कसुमी दबाए गा कसुमी प्रेशर ची गा कसुमी मतलब नकनक बन जाएगा ठीक नहीं जो ना खुआ का जो कंपेयर बनाते हैं छाना हेल्दी ना माहौल पर हेल्दी उतना का तो मसलन कौनस हंसी खुशी नहीं हम बोस पराता चीक सुन सुई दुख दर्द बांटे भी नहीं चीक दुखनी ना जंजोश करते उतना तो तो माहौल चंग को मेंटली हेल्दी लुशिन सुख तो दी माहौल पर गा ना चंग का तो मैं ना खो के मसलन आता आमा डाइवोर्स चेत खची तलाक चेत सुनसे ना खची माली परेशानी और खची ने हम बो मसलन म्योस पिला शिक्षित मसलन कोई का अर्थूं है मसलन या खाजर खंची होती है सुकुली का टीचर चीज मसलन तंग बखंची क्या को मसलन शिंगनुपो चीज कोई आतामा चीज चीज बार बार को टोके बिंदुक से मन खो गिरे मतलब ख्यांग नचाम बिंदुक ऐसा उसने दूं बिंदुक जर बिग चुक सी नीचा स्थान है जखन जी माहौल चिक दजर चिक तो यो ना को दोन मिछार को जूंग अति नंग ना सोसाइटी माहौल पो हेल्दी लुस प्रोशन मेंटली इमोशनली हुआ और दूसरा उसके बाद जो है चंग वजह में पंखचिक ना अत जरत डिप्रेशन छकन पो दिमागी कमजोर होती है इनको बिल्कुल खुया नुक हिम्मत में पेंदन निदन निजरा दो जमन दी डिप्रेशन पो किसी को भी हो सकता है जेनु यानी कभी भी किसी को भी होता है खुए दना मी खुए गलती में मत पा डिप्रेशन निजरमो यहां तक जब क्या खोलतो अंगस खोलतो मिवात पजेन मसलन खोलतो बचन मिवात जो खुए कंट्रोल है जमन खुए खोलतो खुद ब खुद नंगो ना पैदा छ जिन जरमो जैसे कि आता गोछक छ योस बुखार छ छना कोई इन्फेक्शन छ छना बुखार पो जिन खुद बुखार पो देखो जिन न्यूज चले या जो से थुंग से ता जमन दे छना दे न जो दी मेंटल इलनेस पो खो खुरेज नतपो खोलतो बसे खोलतो छ जमन खुद दी बीमारी छना खोलतो खुद ब खुद खुआ पैदा छ जिन यानी कि दे मरीज पे कंट्रोल है जमन छना दी डिप्रेशन ही द मरीज उत्खन ला कॉज निज जेन वजह निज की चिकपाना साइकोलॉजिकली खवा ओदिंग दक्षन सपात जेस दे माहौल ने ना चिक जो हद हो सकता है दूसरा अति हार्मोन रे ओचिन नमो अतिर गयानु दे हार्मोन उन फील गुड फैक्टर्स जशिन फील गुड गुड फील हार्मोन जशिन यानी कि देना मेन पो सेरोटोनिन जरखन चिक डोपामिन जरखन चिक अति दिमाग पे पैदा छचिन सु और नॉरएपिनेफ्रिन जरखनी हार्मोन चिक दी सेरोटोनिन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन पो पैदा अचानक तो अति दिमाग पे खुश लुशिन सु इंसान अचानक दी हार्मोन उन लेवल पो या हार्मोन उन पैदा छचो हार्मोन लेवल पो अति बॉडी कम कतो पैदा अचानक दोन ला दी डिप्रेशन पुछा छचो छाना अता दी सेरोटोनिन डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जरत चीज खची का एक्टिविटी खची का बड़े छचिन मसलन जैसे कि अति एक्सरसाइज बेत मेडिटेशन बेत ड्यू निकनंग या स्लीप पुंगता नॉर्मल बिल्कुल गला इतना ड्यू निकनंग अता ख्यालात मसलन गला शोबिक सिले या यरस मसलन तबलीग चिक यानी मसलन या मसलन म्यूजिक चिक यानी दे जति का दी हार्मोनोनी अजुक पो प्रोडक्शन पो गला छचिन सुख और दी हार्मोन उन स्वी ब्रेन पे अनु कम का तो पैदा छना खो डिप्रेशन नि शिकार छचिन छना अता दक्षन जान यंबो यंबो आते इलाज पो कतो जरना
1: हो ना कसे सर दे इलाज पो हंग आता पेशेंट ची यो दिया और दो मते कुल्या कुल्या खो बाहर ला नॉर्मल जिंदगी फिल खूम में आते कोशिश बित दे फिल आता ची ट्रीटमेंट
0: बिल्कुल नो दी डिप्रेशन ही मरीज पो जैसे कि आते जिस दक्षन पूरा सोसाइटी अनु तकरीबन 30% एबो
1: डिप्रेशन
0: जो योत्पना लेवल पो मार खचिया कम डिप्रेशन हो चिन हल्के में कोई अलामत पहुंच जाए नॉर्मल जिंदगी बेन दुख चिन खचिया मन मंगमो छाने का तो अता पता छचिन वो डीप फ्रू मन चुपचाप दूध वो बाकी नहीं हंसपर से नुक डीप फ्रू से हंसपर से हमें या दी अपोज या मसलन दी थर्माज या दी अन्य दी म्यूजन कम जिंदुक सों मसलन दिस दिस या कोई नहीं जो मम्मी जरिम ना हद से ज्यादा का तो मरीज छाने में नगते शिनाख बच्चा में लेकिन ngati chahe zhngen nungpo rana zanzo zin ya rangin halka alamat chik peda song suyot zanifalla ngati dika tawa

0: Ishtena juna salampo kabul songshik diringi achinomoni program pe asawatsik nalangas yoga helps to cultivate the mindfulness this ko la spirari gran lep chupi fraluks be yang der gapna yoga instructor मैम निहारिका शर्मा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल से मैम इकना सेल्फो पसे योगे फनखेस कोला त्रिसेगा यंतांग सुपे क्लिप चुपी फ्रेलुक्स बेद कसनी प्रोग्राम अर्थना मैं न्योत खनून योगा हेल्प्स टू कल्टिवेट द माइंडफुलनेस इस कोला जर ना दी मतलब पु इंसु की योगा संगति अल दत पाव ना अतिर गो इसका शंपो ना यंबो जक्षिन सुग यंग दी माइंडफुलनेस योगा आ फिजिकल पोस्चर ना मेडिटेशन निस्का थुते चोसिन सुग दी निस्का यंबो बचस पोज बसे अतिल दत पाव ना अतिर गो इसका हेल्दी लुशिन सुग जगजरे गास सुचिगिस अगर प्रैक्टिस बना योगे खुए दिमाग पे स्ट्रेस छात ना दोन सक स्टोर्चिन सुग खुए फोकस पोर यला छचिन सुग यंग जगा योगा बचस पोज बसे खुए दिमाग सुकून थोपचिन सुग या योगे स्ट्रोली का अतिर गो छुचन लुशिन सुग और योगे स्ट्रोली का मोटापा जरे टेंशन जरे स्ट्रेस ना एंजाइटी यंग स्केट पे जरमो सगा ठीक छचिन सुग योगा एक एक्सरसाइज शी के इन सुग और अगर गतिस लेने उत्खने फ्रोनिस अगर योगा खोइज गोजुक कतो बना खोइ एग्जामी स्ट्रेस छातना दोन सक थगनी छचिन सुग और खोइ दिमाग ना अर्गोनिस का एक्टिव लुशिन सुग और खोइल दत पे छुत पास के चिन सुग योगा से यंग अति इम्यून सिस्टम यानी अति गुए दे चो नंगोसला सिस्टम जियो तंग अंगास बसे दी सिस्टम पोस गति चाम शिरगो या जरमो यंग मदना ओदोनी कने गतंग स्टोंग से जक पतंग योगे स्ट्रोलिका दी इम्यून सिस्टम पॉइंट छुचेन छचिन सुग और अति गुएं ख्राक ठीक बसे रुलचिन सुग यंग अजानुन ठीक बसे जुचेस पॉइंट योगे स्ट्रोलिका गतंगा ठीक छचिन सुग कसनी दिस कोला आंगी स्पेरा देखा जक्से अंदरी आकाशवाणी करगिल स्टूडियो मैम निहारिका शर्मा योगा इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल लास्ट के जुग से खोसियो त्यंता मैम इकना योगे स्कोला योगे बेनिफिट से स्कोला आयंतंग सुपे क्रिस्टे लिप चुके नमस्ते मैम सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल के आज आकाशवाणी करगिल के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम मैम मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें हमारे प्रोग्राम सुनने वालों को
1: नमस्ते आप सभी को मेरा नाम निहारिका शर्मा है मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आती हूँ इस समय मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एज अ योगा इंस्ट्रक्टर कार्यरत हूँ
0: थैंक यू मैम तो मैम आज का हमारा टॉपिक है योगा पे तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगा का मतलब क्या है और ये कहाँ से निकला है और कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है मैम
1: तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि योग का जो अर्थ है उसका मतलब है टू यूनाइट दो चीजों को आपस में जोड़ना हम बेसिकली इसका जो मतलब है मीनिंग है उसको ये मानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन मतलब जो हम मेटेरियलिस्टिक सोल है उसका स्पिरिचुअल सोल से आपस में जब कनेक्शन जुड़ता है तो उसको योग कहा जाता है
0: जी
1: और इसकी जो स्टार्टिंग है वो वैदिक पीरियड से बताई गई है वैदिक काल से तो काफी सारे जो वैदिक टेक्स्ट है हमारे पास उसके अंदर योग के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं जैसे कि अगर आप भगवद गीता उठाएंगे तो उसमें भी योग के बारे में बताया गया है सेकंड अध्याय में बताया गया है योग के बारे में योगस्थ कुरु कर्माणी संगम तत्व धनंजय सिद्ध सिद्धे समभूतवा समत्वम योग उच्चते तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी किताबें हैं योग दर्शन है जो महर्षि पतंजलि ने लिखी है उसमें योग की डेफिनेशन बताई गई है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कि योग से आप अपनी जो डिजायर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी डिजायर्स कंट्रोल हो जाएंगी तो आपकी लाइफ में जो मतलब दुख है जो सैडनेस है जो परेशानी है जैसे एंजाइटी डिप्रेशन आजकल छोटे छोटे लोगों को हो जाता है बहुत जल्दी हो जाता है छोटी छोटी बात से हम परेशान हो जाते हैं तो नहीं होंगे तो ये जो योग का अर्थ है ये किताबों में बताया गया है
0: जी मैम शुक्रिया मैम मैम क्या योगा का सिर्फ एक ही टाइप्स होता है या और भी बहुत सारे टाइप्स है योगा में
1: मॉडर्न अगर योग के अंदर आप देखें तो मॉडर्न योग में बहुत सारे योग के टाइप्स है जैसे कि आप अगर करेंगे तो अयंगर योगा अष्टांग योगा हठ योगा पावर योगा विन्यासा फ्लो ठीक है विक्रम योगा तो योगा के बहुत सारे टाइप्स हैं पर्टिकुलर मतलब आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप योग का कोई भी टाइप चूज करके उसमें अपना योग का ज्ञान हासिल कर सकते हैं ज्ञान ले सकते हैं योग की प्रैक्टिसेस को सीख सकते हैं
0: जी मैम तो योगा करने से हमारे बॉडी और हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैम इनके बारे में जरा डिटेल में बताइएगा
1: जी बिल्कुल योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप हेल्थ के ऊपर योग के बेनिफिट्स लेंगे तो अगर आपको नॉर्मली छोटी छोटी समस्या जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए मैं बता रही हूँ योग का कितना बड़ा रोल है अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है एंजाइटी हो रही है डिप्रेशन हो रहा है अगर आप योग करेंगे तो आप काम रहेंगे शांत रहेंगे बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जैसे भ्रामरी प्राणायाम है उसके तो सीधे रिजल्ट ही आपके

0: मेंटल हेल्थ पर जाते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप एकदम शांत नॉर्मल हो जाएंगे, अगर आप पैनिक हो रहे हैं आप तो। और जैसे ताड़ासन हो गया, त्रियक ताड़ासन हो गया, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है साइटिका हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, माइग्रेन है, तो अगर आप योग का रेगुलर अभ्यास करोगे तो आपको इन सारी चीजों से ना निजात प्राप्त होगी, आपको मतलब इन सी चीजों से आप परेशान नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को योग कराया है, इवन अभी भी मैं करा रही हूँ, तो उनके मतलब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं फीडबैक लेती हूँ लोगों से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मतलब कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम थी तो अब लगभग 90% उनकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो रेगुलर योग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पेन नहीं होता है। बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट थे जिनके ऊपर हमने रिसर्च भी की थी कि हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कराने के ये फायदा हुआ कि उनको जो रेगुलर अटैक्स आते थे अस्थमा के, अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, तो उनको वो आना बंद हो गया और उनको काफी लंबे टाइम तक कोई अटैक नहीं आया और उनको रिलीफ हुआ। तो उन लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिस की अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो उसका रिजल्ट है कि अब वो पूरी तरीके से अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में आप अच्छे आए या ना आए, लेकिन आपका अंदर का जानता है कि आप अगर योग करते हैं ना तो आप अंदर से बिल्कुल अच्छा रिजुविनेटेड एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि योग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आजकल हम एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद योगा की तरफ जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एलोपैथी आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको इंस्टेंट रिलीफ दे रहा है, केवल इंस्टेंट रिलीफ, थोड़े टाइम बाद वो अपना काम खत्म कर देता है, वो प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट होती है। और उन मेडिसिन के आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे, जैसे लिवर पे, किडनी पे, पैनक्रियाज पे, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप मेडिसिन मत लीजिए। हमारी रसोई में जहां हम खाना बनाते हैं वहां इतनी सारी औषधियां हैं, हल्दी को ले लो आप, ठीक है, धनिया को ले लो आप, जीरे को ले लो, कितने सारे उसके मतलब एडवर्स इफेक्ट है, बहुत बढ़िया इफेक्ट है उसके, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो और जब आप योग करते हो, आप दिन भर कोई भी कार्य करो, अगर आप योग करते हो तो आप उस कार्य को ना और बेहतर तरीके से कर पाते हो। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस आता है, आप कपालभाति का अभ्यास करिए, आप सूर्यवेदी का अभ्यास करिए, प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसका अभ्यास करोगे तो आपको आलस कम आएगा, आपका इंसोमिनिया ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आती जिनको, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो, उनका सूर्य नमस्कार से उनको नींद आने लग जाएगी, अच्छी नींद आएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। आजकल एक नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब व्यक्ति क्वांटिटी ऑफ लाइफ पर डिपेंड नहीं है, मतलब उसको लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मतलब उसको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए। और जिस हिसाब से आजकल के लोग हैं, लोग हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप योग करोगे, ये बहुत ही आसान, सस्ता और टिकाऊ तरीका है आपको ठीक रखने का। आप डॉक्टर से बचेंगे, आप योग करेंगे तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही खुद को भी ठीक करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी कराइए, वो भी ठीक रहेंगे।
1: जी मैम, शुक्रिया मैम। तो मैम, ये हमारा प्रोग्राम जो मेनली वुमेन्स प्रोग्राम है, तो मेनली वुमेन्स के लिए योगा करने से उनके बॉडी में या उनके हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है मैम?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि फीमेल के लिए कितना बेनिफिशियल है योग। तो फीमेल्स के लिए तो मुझे लगता है उनको तो योग करना ही चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। कुछ फीमेल्स वर्किंग वुमेन भी है जो बाहर का भी देखती हैं, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो फीमेल को ही है इस समय, तो उनका स्ट्रेस रिलीज होगा। और फिजिकल बेनिफिट्स के लिए सबसे ज्यादा, जैसे फीमेल्स को एक टाइम के बाद ना ओबेसिटी, मतलब उनकी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है। बहुत सारी मैंने फीमेल्स देखी जिनको लो बीपी की समस्या रहती है, तो उसके लिए योगा बेनिफिशियल है। फीमेल्स को ना थोड़ा सा टाइर्ड हो जाती है, जल्दी से थकने की समस्या हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फीमेल्स में ही पाई जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, वेट बढ़ने की, तो उसके लिए योग बहुत अच्छा है। क्योंकि योग को अब हम केवल योग एक्सरसाइज से नहीं देखते, योग का मतलब है आपका मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर आप इन तीनों से, इवन सोशल वेलबींग को भी इंक्लूड किया गया है, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि आप अंदर से जितना खुश महसूस करेंगे आप उतना ही लोगों के साथ भी अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। और फीमेल्स के लिए आजकल आपने सुना होगा प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, सब तो नहीं, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे योग करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और सी सेक्शन नहीं कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी
1: योगा करने से।
0: जी जी,
1: अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट के दौरान या वो प्रेगनेंसी में भी योगा प्रैक्टिस कर सकती है कि नहीं मैम?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेगनेंसी में योगा प्रैक्टिस कर सकती है, बट एक टाइम के बाद, जैसे 3 मंथ्स आपके बहुत ही खतरनाक

0: नाक वाला समय
1: हाँ
0: होता है, उस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद आप बिल्कुल योग कर सकते हो, और योग करने से आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और आपको थोड़ा पेन भी कम होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप
1: प्रेग्नेंट
0: माँ
1: है।
0: बन चुकी हैं।
1: हाँ
0: तो ये बहुत अच्छा है।
1: सही।
0: और इवन योग कर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप योग कर सकते हो, और प्रेगनेंसी के बाद भी आप योग कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी का जो शेप खराब होता है ना, वो भी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि आजकल

0: ऐसा नहीं है, ये तो मतलब एक तरीके से योगा के लिए ना मिथ है कि केवल फ्लेक्सिबल पीपल कर सकते हैं। हर कोई, हर एक कैटेगरी का बच्चा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति योग कर सकता है। मेल हो,
1: अच्छा
0: फीमेल हो, सब योग कर सकते हैं। और अगर आप योग करेंगे तो आप बच्चों की तरह चहकेंगे भी, दौड़ेंगे भी, और जो आपका मन हो वो कर सकते हैं, क्योंकि योग आपकी बॉडी को ना इतना स्ट्रांग बना देता है कि इवन एक 60 साल का व्यक्ति भी एक 30 साल के व्यक्ति की तरह कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है अगर आप योग करते हैं तो।
1: थैंक यू मैम। मैम और एक सवाल, क्या योगा करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं?
0: देखो बेसिक, बिल्कुल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बेसिक इक्विपमेंट होता है योगा मैट। आपके पास मैट होना चाहिए जिस पर आप योग करें, क्योंकि योग जब आप करते हो ना तो आपके अराउंड एक एनर्जी क्रिएट होती है, और जिस चीज पर आप योग करते हो वो उसके अराउंड भी एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपको अपना मैट हमेशा अपने साथ रखना है योग करने के लिए।
1: जी
0: और
1: मैम,
0: दूसरी बात, जैसे किसी किसी की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा स्टिफ होती है, तो उसके लिए हम कुछ योगा प्रॉप्स यूज करते हैं, जैसे योगा ब्रिक हो गया, योगा बेल्ट्स हो गया, योगा बॉल हो गया, वॉल एक आती है, या फिर वॉल योगा हो गया। हम दीवार का सहारा लेकर भी कुछ एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें हम बॉडी के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंड को अच्छा करते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस में भी आ जाता है अगर आपको एडवांस योग करना है, अपनी बॉडी को ज्यादा फ्लेक्सिबल करना है। बेसिक योगा के लिए इसकी उतनी ज्यादा नीड नहीं रहती है, लेकिन जैसे कोई ओल्ड एज व्यक्ति आ गया हमारे पास जिसको नहीं झुका जा रहा या हिला जा रहा, तो उसके लिए हम योगा प्रॉप्स का यूज करते हैं जिससे वो बेहतर तरीके से योग कर पाए।
1: थैंक यू मैम। क्या योगा करने के लिए हम दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं या इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है। योग करने के लिए ना स्पेसिफिक टाइम मैं नहीं कहूंगी, लेकिन योग करने के लिए आपको आपका पेट खाली होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। मतलब आप अच्छे से सुबह फ्रेश हो, और सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि योग ना आपकी एनर्जी को ना अपर डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, जब आपका सूर्य उदय होने वाला हो और आप उस समय योगा करें तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी, और स्पिरिचुअलिटी भी आपकी इनहेंस होगी। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, आप ईश्वर की ध्यान पूजन करते हैं, अगर आप योग करेंगे ना तो आप ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे ईश्वर के साथ, ऐसा योग में देखा गया है। और लगभग खाने के 6 घंटे बाद आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप शाम के वक्त भी योग करना चाहते हैं तो।
1: अगर कोई योगा प्रैक्टिस करना चाहे या वो योगा करना स्टार्ट करे तो वो कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ, उसके लिए हमारे पास एक बिगनर्स मॉड्यूल है योगा का। हम योगा कराते हैं बिगनर्स के लिए, जब कोई नया नया योग के लिए आए, जिसको योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या कभी किया भी ना हो, तब भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। स्टार्टिंग में हम उसको सबसे पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराएंगे, लूजनिंग प्रैक्टिसेस हैं, कुछ इजी आसनाज है जैसे ताड़ासन हो गया, त्रियक ताड़ासन हो गया, साइड बेंडिंग हो गई, अल्टरनेट टू टच हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड हो गया, मलासन हो गया, कुछ बेसिक प्रैक्टिस और बॉडी स्ट्रेचिंग हो गई। तो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस हैं जो बिगनर्स के लिए होते हैं, और धीरे धीरे जब उसकी बॉडी ओपन होना स्टार्ट हो जाती है तब हम उसको इंटरमीडिएट लेवल पर, देन एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कराते हैं।
1: थैंक यू मैम। मैम और एक क्वेश्चन है कि ज्यादातर यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि हमें तो पहाड़ी लोग हैं, तो हमें कभी बकरी चढ़ाने या खेतों में काम करना हो तो हमें तो पहाड़ में चढ़ना उतरना तो ये सब होता रहता है, तो इससे हमारा जो योगा का प्रैक्टिस है वो हो जाते हैं, तो ये बात सही है कि क्या है मैम?
0: ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि योग का मतलब केवल फिजिकल लेवल पर फिट होना नहीं है। योग का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, इन चारों लेवल पर फिट होना। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो आपकी टांगों की एक्सरसाइज हो रही है, ओवरऑल बॉडी का तो कोई कार्य नहीं हो रहा ना इसमें।
1: सही मैम,
0: और सबसे बड़ी बात, आपका मेंटल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस प्रैक्टिस में, आपका स्पिरिचुअल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड आपका सोशल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप योग करते हो ना, तो आप जब भी कोई प्रैक्टिस करते हो, फिजिकल प्रैक्टिस भी करते हो, जैसे आपने मान लिया हम ताड़ासन करा रहे हैं किसी को, तो उसमें उसकी फिजिकल बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, उसकी स्पिरिचुअल फोकस भी इन्वॉल्व होता है, उसकी मेंटल बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, इवन उसकी ब्रीदिंग जो हम सांस लेते दिन भर लेते छोड़ते रहते हैं वो भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उस टाइम पे हम ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ाते हैं बॉडी में, डीप इनहेल और एक्सहेल करने के लिए।
1: सही मैम।
0: तो इसीलिए अगर कोई ये बोलता है कि हम पहाड़ से हैं तो पहाड़ चढ़ते उतरते हैं योगा हो जाता है, तो नहीं, वो योग नहीं है, वो केवल आपकी एक्सरसाइज है। योग अलग चीज है, एक्सरसाइज अलग चीज है। आप जिम में भी जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, योग नहीं करते हो। इसीलिए योग को आजकल मान्यता दी जाती है, क्योंकि योग में हम केवल, योग का मतलब बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं है। योग के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका आसन भी आता है, आपका प्राणायाम भी आता है, आपका ध्यान भी आता है। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं तब आप कॉन्स्टिट्यूट करके योग कर रहे हैं। अगर आप केवल अपने पैर चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, तो आप योग नहीं कर रहे हैं, आप केवल हाथ पैर चला ही रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, योग के अंदर

0: एट लिम्स बताए गए हैं योग दर्शन में। तो योग में ना एट चीजें बताई गई, जैसे यम हो गया। आपको योग करने से पहले भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छा। अगर आप उन चीजों को खाएंगे जो योग करने से पहले वर्जित है, मतलब नहीं बताई गई है आपको नहीं खानी चाहिए, तो आपको योग का प्रॉपर जो इफेक्ट है आपकी बॉडी पर देखने को नहीं मिलेगा,
1: नहीं मिलेगी।
0: इसलिए योग में जैसे आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर देता है तो बोलता है कि आपको परहेज करना है, ये चीज नहीं खानी है, अगर आप खाएंगे तो आप दवाई असर नहीं करेगी। उसी प्रकार अगर आपको योग के अंदर किसी चीज को मना किया गया, अगर आप उसको करेंगे उसके बाद योग करेंगे तो वो योग आप पर असर नहीं करेंगे।
1: मैम, और एक वर्ड सुनने को मिलता है ना मेडिटेशन योगा के साथ साथ में, तो ये मेडिटेशन और योगा सेम है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट है? मैम
0: नहीं, मेडिटेशन योगा का ही पार्ट है।
1: अच्छा।
0: योग को ना, मतलब हम योग को ना केवल फिजिकल एक्सरसाइज से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने फिजिकल एक्सरसाइज योग का ना बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है बस। अच्छा। आसनास जिसे हम बोलते हैं, मेडिटेशन योग का ही पार्ट है, योग के अंदर ही आता है, योग से अलग नहीं है ना, इनमें कोई डिफरेंस है। तो योग के अंदर बताया गया है हमें, एट चीजें बताई गई हैं, तो आई थिंक सेवेंथ नंबर पे ध्यान आता है मेडिटेशन। वो आपकी अपर अवस्था होती है, पहले आपको अपनी बॉडी को फिजिकली फिट करना है आसनों से, फिर आपको अपनी बॉडी को मेंटली फिट करना है प्राणायाम से।
1: अच्छा।
0: और आपको अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस से अपनी बॉडी को मेंटली फिट करना है, उसके बाद आपको स्पिरिचुअल इनलाइटन के लिए ध्यान में जाना पड़ता है। तो ध्यान में आप तभी जा सकते हैं जब आप फिजिकली फिट हो एंड मेंटली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट है मेंटली फिट नहीं है तब भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, और आप मेंटली फिट है फिजिकली फिट नहीं है तब भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान के लिए आपको पूरी तरीके से पक्का होना पड़ता है, फिजिकली भी मेंटली भी। तो जब आप इन दोनों चीजों से ऊपर उठेंगे तब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे।
1: थैंक यू मैम। मैम, आपको कितना टाइम हुआ है योगा करते हुए और दूसरों को प्रैक्टिस करवाते हुए?
0: मुझे योग करते हुए, मैंने 2017 से योग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था।
1: अच्छा।
0: और अब तक मैं योग कर रही हूँ और करा रही हूँ, योग का प्रचार प्रसार मैं कर रही हूँ इस समय। तो मुझे लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं योग को प्रैक्टिस। अच्छा। करते हुए एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने योग कराया और जो आज मतलब बहुत खुश हैं उस प्रैक्टिस से, और पूरी तरीके से ठीक भी हो गए हैं, जिससे मुझे काफी खुशी मिलती है कि मेरे द्वारा किसी का भला हो
1: सके। मैम, आपको 7 साल का टाइम हुआ है मैम योगा करते हुए, तो आपको कितना बेनिफिट्स हुआ है, या योगा करने से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके साथ?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे करना भी है शेयर अपना एक्सपीरियंस।
1: हाँ जी मैम।
0: मुझे जब मैं छोटी थी और थोड़ा सा और भी बड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: मुझे गुस्सा बहुत आता था, मुझे एंगर इश्यूज थे, मैं बहुत छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, या फिर बहुत छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेती, स्ट्रेस ले लेती थी, ओवर थिंक करती थी, और मुझे एंगर इश्यू था, मतलब अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी तो मैं गुस्सा हो जाती थी, और बहुत गंदे वाला गुस्सा होती थी, मतलब छोटे मोटे लेवल का नहीं। उसके बाद जब मैं योग में आई ना, तो जब मैंने योग प्रैक्टिस की, योग में मैंने आसन किए, प्राणायाम किए, फिर मैंने ध्यान की ओर भी गई।
1: अच्छा।
0: तो उसके बाद मैंने अपनी बॉडी में ये चेंज देखा कि अब बड़ी से बड़ी भी बात हो जाती है तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा। लगता है कि लाइफ में ना, मतलब हमारे सांख्य दर्शन में योग के अंदर मैंने पढ़ा, योग के जब आप ग्रंथ भी पढ़ते हो ना वो भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। उसमें ये लिखा था कि प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जैसे हर साल सीजन चेंज होता है।
1: अच्छा।
0: आप एक सीजन में हमेशा नहीं रहते, कभी सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, बसंत आती है। तो इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और उन परिस्थितियों में अगर आपको बैलेंस बनाना है, मतलब अपने आप को स्थिर रखना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, तो आप योग करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब परिस्थितियां बदलती थी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मैं जिद करती थी चीजों की, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत डिमांडिंग थी अपने घर में। लेकिन अब मुझे मेरे घर वाले खुद ये बोलते हैं कि जब से तुमने योग स्टार्ट किया है, योग कर रही हो, तुम करा रही हो, तब से तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छा चेंज आया कि अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, छोटी छोटी बात पे बहस नहीं करती, शांत रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ और अपना योग करती हूँ बस।
1: थैंक यू मैम। तो मैम, आपने योगा का स्टार्टिंग कैसे किया था? मैम, आपने कोई ट्रेनिंग ली थी या कोई क्लासेस ली थी? मैम,
0: मेरे घर का थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि हमारे घर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्यादा होती थी।
1: अच्छा।
0: मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
1: अच्छा।
0: तो मेरे घर में पूजा पाठ ये सब चीजें ज्यादा होती रहती थी, हवन वगैरह, तो थोड़ा सा मुझे इन चीजों में ना अच्छा लगता था, इन्वॉल्वमेंट, पूजा वगैरह हमारे यहाँ होती थी, हवन होते हैं।
1: अच्छा।
0: मंदिर जाना हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे, तो इन चीजों को करती थी, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि मुझे लाइफ में ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, मेरा मन था हमेशा से। तो मैं जब अपने दादा के साथ डिस्कस करती थी तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी ये प्रैक्टिसेस बताते थे जब मैं छोटी थी उस टाइम पे। उसके बाद जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया तो मुझे पता चला कि योग की यूनिवर्सिटी है, थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे। तो बाबा स्वामी रामदेव जी, जिनके बारे में आप, मुझे लगता है आप तो पूरी दुनिया जानती है, वो योग गुरु हैं, तो मुझे उनकी यूनिवर्सिटी के बारे

0: में पता चला। तो मैंने उनकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार से मैंने योग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा और इसमें ग्रो करने का मन हुआ, क्योंकि मैंने योग पढ़ा। अब योग से डिसीज मैनेजमेंट कैसे हो, लोगों को ठीक कैसे किया जाए, तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करी। तो मुझे पता चला कुछ बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो ऐसे कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे एमएससी इन योगा थेरेपी। तो फिर उसके बाद मैंने सीयूईटी का एग्जाम देकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपनी एमएससी योगा थेरेपी में कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि मैं योग में रिसर्च करूं, तो फिर मैंने नेट का एग्जाम दिया, यूजीसी नेट का, और ईश्वर की कृपा से वो मेरा क्लियर हो गया। तो अब शायद आगे मैं योग में ही अपनी पीएचडी परस्यू करूंगी और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी।
1: लास्ट में आप इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको योगा से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहोगी मैम आप?
0: मैं बस लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो योग है इसको वर्ल्ड वाइड लोग कर रहे हैं, ये भारत की धरोहर है, ये हमारा खजाना है, हमारा ट्रेजर है, और हम ही इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे और सब बेनिफिट ले रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि जो हमारा है उसका हमें फायदा ना हो के दूसरों को फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इसमें फॉल्ट है। तो मैं सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग योग करिए, योग को अपने जीवन में अपनाइए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स आप लीजिए। क्योंकि अगर आप इस चीज को करेंगे और आप लोगों को मैसेज देंगे, तो बाहर व्यक्ति हमसे इंस्पायर होकर योग कर रहा है और हम ही उसको नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि हम ही लोग में कोई ना कोई गलती है। बाहर आप देख रहे हैं, आप विदेशों में जाइए, आप किसी भी कंट्री में जाइए, हर व्यक्ति योग को कितने मतलब खुश होकर योग करता है, और इवन वो योग सीखने के लिए भी भारत आते हैं, क्योंकि हम ही हैं जिसको योग आता है, हम ही हैं जो योग को बाहर आगे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आजकल योग में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। मैं इसलिए भी आपसे योग तो आप अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। जैसे कि मैं कारगिल लद्दाख में योगा इंस्ट्रक्टर बन के आई हूँ, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ करेंगे तो आप अपने यहाँ भी जॉब पा सकते हैं। बाहर आप जाइए, जब से प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रचार किया है तब से तो योग को तो मतलब मुझे लगता है हर घर में योग हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको योग के बारे में पता ना हो। तो इसमें कितने योगा रिट्रीट सेंटर हैं, योगा सेंटर्स हैं, इवन एकेडमिक्स में भी रोल आ गया है। अब यूनिवर्सिटीज भी योग डिपार्टमेंट खोल रही हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। तो अगर हम योग में एकेडमिक जितना हमारा एनरोल होगा उतनी हम नौकरियां पाएंगे। हम ये कहते हैं जॉब नहीं है, मुझे नहीं लगता जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन हम उन चीजों को नहीं कर रहे हैं जिसमें अब आने वाली है वैकेंसीज। आज से दो या तीन पांच साल के अंदर अंदर योग के अंदर मुझे लगता है पूरे भारत में अच्छी खासी वैकेंसी निकलेगी। अभी शायद आपके यहाँ भी 18 योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग आराम से एम्प्लॉयमेंट भी पाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ।
1: सही मैम, दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हैं मैम।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू मैम। लास्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाल के यहाँ पे आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम। नक्सन सुपा एंतेस सल्पवसे त्रिसे गार्थ नाबे न्यूटपिन देना त्रिसो ना न्यंबो दिरिंगी अच्छे नुमोनी प्रोग्राम पो तुस्पो थमाथोन रिद्यांगमायो रियांदु चोक्स प्रोग्राम रिगी स्ट्रोलिका नायां यंतांग ना न्यंबो थुक थुक देमन पो चुपा ना इजाजत शेस्ते बोस यजू खुदाए फकरें।

प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईद उजत योंग मी अदिति जगह निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।

0: Miriam, voi vii cam acea zacașvani, cargele, ca ne serine, tu vas pot să tur dune miner nici nu ești cendu. Ca să tacașvani, se negeri că ne ultia nu habărână tapsira rilebe, trile la dang bazet.
1: वाले सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते दर्जे हरारत के पेश नजर शहरियों से अपील की है कि वह गर्मी के मुजिर असरात से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वह मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि लोग जानवरों और परिंदों की प्यास बुझाने के लिए छतों, दुकानों, घरों और दफातर के बाहर पानी से भरे छोटे छोटे बर्तन रखें। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ती गर्मी महसूस की जा रही है। जम्मू खित्ते के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के पेश नजर लोगों को कई एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि वो इसके मुजिर असरात से बच सकें। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया,
2: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतलिक पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो नशे की बिदअत का कलाकमा करने के लिए मुहिम में तेजी लाएं। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नरेंद्र प्रभात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेन्द्र कुमार और दीगर आला पुलिस व सिविल अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मुनशियात के ढांचे को खत्म करने, नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: मुनशियात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के रियासी जिले में मोहम्मद तारिक और गणेश कुमार नामी दो ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। सांबा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद असलम नामी मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मकदार बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मियार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक सस्टेन करना या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में। उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे

0: बैंक का वो बहुत हाई था, मतलब जितना इनकम हमारा था उससे उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था, और कॉस्ट में मेजर 75-80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया, तो अब हम इस पोजीशन में हैं, मतलब अपने माध्यम से ये बता सकते हैं अब हमको कि इस साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और अच्छा खासा होगा, क्लर्क में भी और ऑफिसर्स में भी।
1: आला तालीम महकमे ने सरकारी डिग्री कॉलेजों में यूजी दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म जमा करने और कॉलेज तरजीहात अपडेट करने की आखिरी तारीख में तौसी की है। महकमे आला तालीम के मुताबिक उम्मीदवार अब 30 मई शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर अपनी दरख्वास्तें जमा या अपडेट करा सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमारा जो लास्ट डेट था सबमिशन ऑफ फॉर्म वो 27 5 बजे तक था, अभी हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमारे पास सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेशन आई थी, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 30 तारीख 5 बजे तक लिंक खुली रहेगी, और मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। अभी भी हमने जो उनका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया है, तो उसको भी देखकर वो अपनी चॉइसेस बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलेज वाइज और प्रोग्राम वाइज। तो ये प्रोसेस सारा अभी 30 तारीख तक स्टूडेंट कर सकता है। तो 5 बजे लिंक बंद हो जाएगी, तो ये फिर बाकी जो शेड्यूल है वो उसी शेड्यूल के हिसाब से लिस्ट निकलेगा और फिर राउंड 2 हो जाएगा और स्पॉट राउंड हो जाएगा।
1: SKICC श्रीनगर में 30 और 31 मई को कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की अहमियत के बारे में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की असिस्टेंट डायरेक्टर नायरा मंजूर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया,
3: कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल जो है ये एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल है जो कि श्रीनगर में मुनक़द किया जाता है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 30th और 31st मई को SKICC में ऑर्गेनाइज होगा। इस बार का जो हमारा इवेंट है ये एक मल्टी स्टेज्ड इवेंट होगा। सो वील हैव मेन स्टेज वेयर वील हैव पैनल डिस्कशंस एंड वील हैव परफॉर्मेंसेज एटसेट्रा। वील ऑल्सो हैव अ सेकेंड स्टेज विच इज ओपन फॉर पीपल सो दैट वी कैन हैव अ वाइडर पार्टिसिपेशन। हमारे फेस्टिवल में आपको पैनल डिस्कशंस मिलेंगे, आपको बुक लॉन्चेस मिलेंगे, आपको म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, कैरियोके, आर्ट एग्जिबिशन्स, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
1: इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे नशर होगा। प्रोग्राम की मेहमान नायरा मंजूर के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक राठर हम कलाम होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को आईनी और जमहूरी हकूक देने से पायदार तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है। श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरों के साथ तबादले ख्याल करने के दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल करना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और प्रदेश नायब सदर रेखा महाजन के अलावा कई दीगर पार्टी लीडरों ने भारत के सपूत और कौम परस्त लीडर वीर विनायक दामोदर सावरकर को उनकी 143वीं जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। गुरहा जम्मू के स्मृति भवन के एक वफद ने भवन के सदर विक्रांत गुप्ता की कयादत में आज बीजेपी के प्रदेश सदर सत शर्मा के साथ मुलाकात की। वफद ने इलाके में कायम कम्युनिटी हॉल की दीवार बंदी कराने का मुतालबा किया। पार्टी के जम्मू साउथ यूनिट के एहतमाम से आज एक तंजीमी मीटिंग मुनक़द हुई। इस मौके पर तंजीमी अमोर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने पार्टी सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के रियासती सदर आरके कलसोत्रा ने डॉ बीआर अम्बेडकर की अहलिया माता रामाभाई के निर्वाण दिवस पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। कॉन्फेडरेशन के मेंबरान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रामाभाई अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की थी। बरेसगीर में उर्दू जबान के एक नामवर और मुमताज शायर बशीर बद्र इंतकाल कर गए हैं। उनकी वफात पर जम्मू कश्मीर की कई सकाफती और अदबी अंजुमनों ने अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के अमले ने बशीर बद्र के इंतकाल पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। सागर कल्चरल फोरम और अंजुमन सदाए फन राजवार हंदवाड़ा ने भी उनके इंतकाल को उर्दू जबान अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर।

0: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मुसाफिरों के बढ़ते रश को देखते हुए शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का एक इजाफी कोच और श्री माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में एक इजाफी स्लीपर क्लास कोच जोड़ने का फैसला किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं बसारत गुल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा सिर्फ एक मौशी मसला नहीं बल्कि ये आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर बरहाए रास्त असर अंदाज होने वाला एक हमागीर बहरान बनता जा रहा है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें मुल्क की मईशत के हर शोबे को मुतासिर करती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट, सन्नत, ज़राअत और आशियाई जरूरियात की तरसील का इन्हिसार बड़ी हद तक पेट्रोलियम मसनूआत पर होता है। जब ईंधन महंगा होता है तो इसका बोझ आखिरकार आम शहरी को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहला असर सफरी अखराजात पर पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा मुतवस्त और कम आमदनी वाले तबके के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करता है। ईंधन की कीमतों में इजाफा सन्नती पैदावार को भी मुतासिर करता है। कारखानों के पैदावारी अखराजात बढ़ने से अशिया महंगी होती है और बाज सन्नतें पैदावार कम करने पर मजबूर हो जाती है जिसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। ज़राअत का शोबा भी इस बहरान से महफूज नहीं रहता क्योंकि ट्रैक्टर, आपाशी और ज़रई नकल हमल के अखराजात बढ़ जाते हैं जिसका असर बरहाए रास्त गजाई कीमतों पर पड़ता है। ताहम इस सूरत हाल में सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि आवाम की भी अहम जिम्मेदारी बनती है। शहरियों को चाहिए कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटर गाड़ियों की मुनासिब देखभाल और मुतबादल तवानाई के जराए के इस्तेमाल से भी ईंधन की खपत कम की जा सकती है। इसी तरह जखीरा अंदोजी, मसनू महंगाई और गैर जरूरी खरीदारी से इज्तनाब भी मौशी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो आने वाले दिनों में महंगाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। आम आदमी की कुव्वत खरीद कम होगी, बचत कम होने लगेगी और माशरती बेचैनी में इजाफा हो सकता है। मुतवस्त तबका, जो किसी भी मईशत की बुनियाद समझा जाता है, सबसे ज्यादा दबाव का शिकार होगा। हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो वक्ती रिलीफ के बजाय तवील मुद्दती पॉलिसी पर तवज्जो दें, मुतबादल तवानाई के जराए को फरोग दें और आवाम को महंगाई के मुसलसल दबाव से बचाने के लिए मौसर इकदामात करें, जबकि आवाम को भी जिम्मेदारी, सब्र और शौरी तर्ज अमल का मुजहरा करना होगा ताकि इस मौशी चैलेंज का मुश्तरका तौर पर मुकाबला किया जा सके। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और
3: अभी आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे थे। मीडिया वेव 684 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। शब के 8 बजे हुआ चाहता है, लीजिए पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

0: अभी आपने आप तो ऐसे न थे फिल्म में हिमलता को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत शोर फिल्म से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
2: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
1: अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा।
2: कैसे?
1: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा, तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं।
2: अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
1: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
1: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।

0: अभी आपने लूट मार फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत निकाह फिल्म से महेंद्र कपूर, सलमान आगा और आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है हसन कमाल और संगीत से सजाया है रवि ने। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

0: घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने

0: बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
5: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
6: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
5: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री

कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें

0: बांसुरी से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिकारों से खिताब करते हुए डी के शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर

0: आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रूपये से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के सीएसआईआर कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहस मुबासे, इतफाक राय और इख्तलाफ राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिल्ला ने कहा कि इस मजमुए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर परवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस

0: साथ कुछ समय कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
1: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा शिरोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: दरअसल पैंतेस आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू खबर मीडियम आकाशवाणी कारगिल नुत वक्सपुत तुर्गुन फेसोंसु कसता प्रोग्राम यन मजद स्पॉटलाइट प्रोग्राम सिरता से प्रचुखन पॉइंट इनायत अली।
3: अस्सलाम वालेकुम, आकाशवाणी करगिल रीजनल न्यूज यूनिटी प्रोग्राम स्पॉटलाइट अनुक दिन गचज यंग सचिक यंतांग सुपा नति करगिल अनु गवर्नमेंट ए मुख्तलि सिक्किम नि लुंग पे अनुक यंग सिक्किम चिगि स्कोरला हागोलब चुपिफिया गचांग दिका स्क्योतिन छाना गचा योसिन छाना दि स्कीम पे मिंग पोइन प्राइम मिनिस्टर इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम PMEGP छाना दि प्रोग्राम पे अनुचियो मदबन गति सोमा लज बखानी फ्रू बस भी सुनला गवर्नमेंट इस स्कीम दि नंगजोंस खोआ पेनेतांग से खोआ सोमा लस रोजगार स्टार्टअप जे दरे देखा फोकस भी नो सोमा सोमा आइडिया खुरे रोजगार बे संबत अंगने फ्रून ला गवर्नमेंट इस मदद बात छाना दया ना फायदा थोप से उत्खन अति फ्रिक यंतन सार तस्पद लदाख यूनियन टेरिटरी दान एरिया पुना दि लुंग पे नुक मन यर्गेश मन मामू योंसोत छाना दया न जोम से अतिर अनुक लद्दाख अनुक शिंगलास पुंग सार तस्पद बरबान जगो या टुकुर पक्से अलग अलग दरे अति गोजदम मन मोहम्मद मिया यारिया जो मन जम से खो इस रंग नंग खांगमा रियल वसे सजाई बे संबत तंग से मिमांग सुन लाज बे नो छन दो न जम से दिल लुंग पे नुक लाज बखन अति जवान नोने यो इंजीनियर अहमद हुसैन साहब अहमद साहब अच दिन दी प्रोग्राम पे स्क्यो जुसे खुरी समझोन यंता सुपा यदि स्कीम ने कना गचुगा या खुरी लास पो गचुगला शुरू बस पिन देश को लास पेरा तामे पे आचा यों अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम इनायत साहब, सबसे पहला ना गस ओहदा चिगे लब चुफे सबसे पहले खुदा ला लाग लाग शुक्र दे ला जुप पे का गस शुक्रिया बतनी आता ना अमा की यंतस गा दुसुगला सबक तंग से दुसुगा सिल चुसे या जो यंतस गे फिला मदद बसे गा सिल चुसे गा दी मकाम पे लब चुफे गे बहुत बहुत शुक्रिया दुना गति ऑल इंडिया रेडियो पूरा टीम गा शुक्रिया बत की यंतस जो सो समझोन मीन लेप चुक से यंतस गा चांदी के यों जरे क्यों से गा चीस समझोन मीन सख पर लेप चुक से और मीन लंग अच्छे आगे यंग ची बार गोशे तो कोई प्रॉब्लम या दी सिक्की मी बार यंग प्रॉब्लम या लाजबन अच्छी प्रॉब्लम यो उन दुक दे प्रॉब्लम ने यंतस मी सख पर लेप चुक पे यंता ऑल इंडिया रेडियो बहुत बहुत शुक्रिया जो

0: kela financial problem on jo financial nga support was jo ngati industry department nga mana bahut bahut aste hai dil nga shukriya zarat ngati industrial department ni sam sikda no ngati officer sab sakda juk se od na koin last ben od nga jo aste hai dil shukriya zarat koin nga financial mana zomet support was jo koin nga ni idea khuru so sanga project report bu koin khere di idea ek to unique ot sukori ot pana koin nga kafi koin nga appreciate ang bas or dega khwas nga support ang bas khwang ata su financial khwang support bas nga din gama employment bas magar den khwe na chi chu chu di scheme nda u ngati subsidy ju subsidy issue na yo chu ki subsidy issue nga gunda ngati dc sahab bas ki subsidy anu duna documentation anu ma sakhat na bas bardo ndu ju den una pehla khona nga document bare nga tu zen ringa ta bank panis ngati jnk bank is nga ta mana sakhat mana azab benduk Then as idea could have sons and a coin are rules piano payment in the industrial rule panzer to keep you a guarantor was a menzer.
1: Acha guarantor was a
0: guarantor was a menzer.
1: Benji problem.
0: Then you can guarantor phones into you. Guarantor Natan, the name of Tamama Mushkil, no gripas alver was the land or no gripanata barosach and jurgos. China Duke was mana then was hot problem bendu. They can use and rush with subsidy when the sun need and I case my sons or Junga Dachsan industry upgrade with fila. Nga subsidy khon zarendu ki yari ada no account pan subsidy yung sene 3 sal se chin zarendu halan ki na khon rule yandu to shibir semendu nagar nga khon nga asna la zar
1: de chokun de kon jaxsin ba pene
0: pene khon chiba sin zar khon ma ha ma go daxsan khon dichim ye kon pan yung sene chana bank pan la zar ban zarendu ni khon chi problem khon zarendu pan ki subsidy na yung sot yang khon chi problem tin zu kong subsidy ye kon pan subsidy ni shon bendu mar khon zin subsidy dichig yung sin zu dichig ne 3 sal chana nga yang 3 sal nga intezar bor gos de ju चलो सब्सिडी चलो हतस खोंगा चलो खोमायों जा मगर नी 3 साल नी दा जाया सुंदे जो
1: ता दो यूज में या यंग लोन जा जें जो
0: दो ने ने मन गा अपग्रेड फिल गा लोन मत होप दे
1: अच्छा
0: चलो दो प्रॉब्लम दो दो गुंदा डीसी साहब गा जरीन या जो गा ता डॉक्यूमेंटेशन आ दा नो दो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चो चा दुन दुन जा शंगा ता फाइनेंशियल या दो दुन गा ता प्रॉब्लम यो दुख सरिया
1: तना यरेस जेस के यरेस लास्ट बास हा तारे लोखाजिक सों सों जो चना दी स्कीम पो गवर्नमेंट ने खास कर गा ता पीएम जीपी स्कीम पो करे गचुक फायदा मंद दुख नति समल लाज बखान ला या दिक न गचुक फायदा लेन मा बस दुख देक न एरेज जस की दिया प्रॉब्लम आ नु छन दी प्रॉब्लम पुग चल हाल भाई जदु यदि संबे का गचु सि दुजु
0: नति सबसे पहला ना न्यू एंटरप्रेन्योरशिप सगा दुख जु की नति माशरन छि दुख जर बना दे मिसाल के तौर चिकची इज हटी ताना गंगमस हटी ता दुख दे मिसाल नस कारविंग बना गंगमस कारविंग बचा या चिचीज या एग्रीकल्चर इलाशिक या यंग चिथुंग इलाशिक तो मना गंगमस दनाओ बे कोशिश बिंदु जो एक तरह का नती माहौल पे एक फेलियर से दुख जो है चेजर मना जैसे कि गास कार्मिया बहुत गा बिल्कुल अस्किया मिसाल गास दक्षन कार्मी लास बस इतना नहीं लगा दे सब नहीं लगा आइडिया कि अस्किया गा कस्टमर का तो माऊ ना दे मिसाल कि चीज लगा माउस है एरा मतलब गोबर बने डिमांड या कार्मी डिमांड गा माउस सनी नी लगा दे आइडिया होत की असके मांग नंग नी लगा यंग सोमा आइडिया होत की छि बसंग मार्केट यानु गरंग सेटअप बचिन छि बसंग मार्केट यानु गरंग जिंदा जक्चिन जरखने दे आइडिया नी लगा होत मगर आ यंग चीज बस कॉपी बस खोला दे आइडिया में खो सिर्फ दे थों सुन की गस शिंखानी के ना क्यों ओंदो क्यों से दे शिंखानी के ना का खोस कार्मी बसता ओंदो दे गन ओदे पेने लेंदो मगर नी आइडिया दो मई मई मन ngas mana customer la ta sanga ya shinkhan chi gena demand chi khong se de gena carving ba se de gena khoy gena penik la du mana yin men du men men yin idea mana mong mo chana ni darang mana asil idea ta mana la
1: na la range sach ba go
0: la za ba sach ba go sha ga la shik ba na ri chana de na chi shen du ya na za na failure ta na de nu problem bu bank pa ni sang de fila ba sin tu ya cha yat ni esa bi ka che zar ban atir mong mo to sikim un khere na kama ram ba se nya la du su de chana bank pa na majbur khong song डिपार्टमेंट में ना टाइम मचाया हो चलो गाइस को और पार्ट बताते हैं यंग खोज दूसरी मशीनरी सिखा दूसरी से यंग खोज इन्वेस्टमेंट चाहिए छोड़ ला और टाइम जाया चाहिए ऑलरेडी गाइस बेंड होते नेला चाहिए या यंग चीज बेंड होते नेला चाहिए यंग समय रे स्टार्ट वन टाइम वेस्ट होते चलो खोए और ना लोग यरस ना दक्षिण यार पढ़ा लिखा का तो इन नरिक एंटरप्रेन्योरशिप तरफ ले रहा हूं चिन नरिक यरस माहौल इन तार गोस माहौल ही प्रॉब्लम पूछी दो ओदे सॉल्यूशन पे
1: ओदे सॉल्यूशन ना चले आप पेन हो जिंदे बिल्कुल बख्शी जो अहमद साहब मन दमोज जरेस छाना दायरा लाज वसे लो गात्रुक सोंसिन सुख

0: tang yunen territory lane loga truk song ju yer yes song se yeri las po man yala du lin su gar gar na ran de man mat yeri market po cham se phel se ju
1: snal lana nga pehla chuk machine chung se na nga zera snal lana zas de ju ki nga sirip carving pe ka las bek dien yalik buk sam lekin nga ti carpenter yot khan ba ka sa support chik ma ba ju khashi खोज सीधा कॉपी पे कोशिश बस गस खो पहला पहला गस कारपेंटर लखोर अलग रेट ची मी यो नखोर अलग रेट ची पब्लिक अलग रेट ची जक्स गस खो नंबो नंबो कोऑपरेट बे कोशिश बस मार मार्केटिंग गस जब नगर सर्वे बसलता ना इंगारी के डिजाइन बिखरे नरंग बस सस्ता गोतंग नु छु छनु अति मार्केट में मिल पता में दुख छी बस सस्टेन बचिन जरखन पो छना देना पहला पहला गस सिर्फ कस्टमर ही गस ओदे फिल छु छन गा मजबूर सुंदे ने बाकी चीज जगो बरबन छु ने बोचे जर बना आ कारपेंटर ने गा सपोर्ट मा बस मान लंगी ला चीज को एक चीज चोस तो दु चोस तो जर बना दु खो नि फायदा छत सम से खो सपोर्ट मा बना गा मन पूरा यंग मशीन गा मा छु मो जे प्लेनर ना बेंड सा ना दन गा मा मशीन गा मा यंग छु मो रोस छन गा इन्वेस्टमेंट यंग बा रोस छन तो एक गति माहौल पे दो मिंदु कि सक नियम बो लास बा छन डिमांड का तो जर नरी पहला गा सर करगिल ला दक संगा ले नुब्रा गुंदे गा जेना जन तुरतुक नगा येना डिमांड यो सापी या जन गा ले मन मोमो गा डिजाइन दिगे ने चोस तंग सिंजु या
0: छन पुरा लदा खन पहले
1: लदा पुरा लदा खन नुब्रा सक पा गा तंग सिंजु
0: बिल्कुल जो बिल्कुल अहमद साहब छन दरे जु गतन थोत कि जवान हां फ्रुसा यारे सांसद की एंटरप्रेन्योरशिप या गवर्नमेंट जॉब या जॉब चीज संभव मानी यद में पिन ये जरे जरे चल यारे सोमा जवान गति एंटरप्रेन्योर जो हाँ सोमा संभव था से चीची ने यारे जरे की दूत ला जो मार्केट ही दे ना बोल जरे यंग कौन इंस्पायरिंग यारी ला मतलब कौन इंस्पायर बे पे यारे गचुक कौन फ्रिंजी था जो
1: सोमा गति सिलखानी शुग क्या इंजु सबसे पहला नंगस नल नंगस की यारस सिलचस वोरंग अगर का तो यारस किताबी गरंग अगर का कीड़ा का तो दन्ना यारंग एज ए नौकरी में यारंग चंग दंचमें जो है नौकरी फिल अगर का तो यारस सिल नरी यारंग दे नौकरी सकपा समित दे के सकपा यारंग समित लुशिन सिलचा खोरंग यारस सिल वोशिन गाचीश इन नरी सिलचा खोरंग जर्मन यारस ओदन यारस न्यू इन्वेंशन चिचिबेत मान लो दक्षन बलब जरे यारस मतलब बलब ने चिचिश चोस ओत न चोस ओत यारो ओत ओत पे एक्स्ट्रा यहाँ चिबेत मालूम ही दक्षिण लास पियो दे दक्षिण नी दानु को दक्षिण गांव में प्रोग्राम में बल बेस चोत छाना गाज दक्षिण आमीन इस बात सोका शिंच न तोक्से कुरे यंग गा कारुन यंग मसुंग दे यंग खोए सांग बेत दला लास पुना आमीन इस लक्पे गा बेत गा मशीन बेत गा मशीन दी तरफ सुंग दे जो ओत चो लंग अती चाम से यारस किताबी यारस सिल लन नरी ओदा नु यारस सोमा आइडिया चल बोशिन जो दिया नु यारस सोमा आइडिया गाज म्यू ला न्यू दी गा मतलब सोल्यूशन जिची तंग से दुख छन ओदा सरे न्यू सोल्यूशन तो यारी बिजनेस पहुंचिन जो मान लो दक्षण ऑटोमेशन एक तरफ से छन जैसे गा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो दक्षण एक मामूली ऑडियोनो जो है ऑडियोनो यारस तो एक खो चिप चिचोश बोर्ड छिन ऑडियोनो ला यारस चिप प्रोग्राम यारस फिट बना खोज ओदे लास्ट पे छिन मान लो यारस यारी नंग पुगंग मा यारस ऑटोमेशन चो इन छिन जो है ऑडियोनो ला यारस जेर की खंगमा यारिस गो दी टाइम का फेस या यारी मान लो गतस छू छू टंकी यारस मतलब गति दक्षण ज्यादातर प्रॉब्लम जा दुख देखा मोटर को ऑन बस छेन दुख छू गांव से होना फिर बहुत से छेन दुख एक तो छू वेस्टेज दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज छाना यार मामूली एग्जांपल लेजर ने ओदे ना मोटर को होना ऑटोमेट बाई इंजन जो है छाना गति चांस
0: रोबोट चो इंजन
1: रोबोट रोबोट चो मतलब यार चो यारी टंकी छू गांव ऑटोमेटिक मोटर हो बन छचा चो छू सर ऑटोमेटिक ऑन छचा छाना गति देना इलेक्ट्रॉनिक्स ने कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टूडेंट इज ओदे जगह का रिसर्च बारगोस देखो इस तना ओदे ऑडियो ना जा नया चीज बारगोस
0: अहमद साहब देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एमटेक बस इन सुख छन दी यरी सा गैर सिलखा ने दी सा गुन यदि टेक्नोलॉजी इन यरे इस्तेमाल बस दमे
1: नस तखसन गरी फैक्ट्री के नस इस्तेमाल बस जो नस इस्तेमाल बस जो नस प्रोजेक्ट खची नी दक्षन लास डुले नो दक्षन डू मेन मनी के मतलब कार्विंग समेन कारिंग समेन मायरा गस गति न्यू गति सुलखन फुन लजर मेरे यंतस ठीक पर कर गिल रिसर्च का तो बने रिक यरा गस दु मारी ngar सो लजर मेन यरम ते फील्ड एंड सो रिसर्च वाज इतना गति दे अपॉर्चुनिटी जो दक्षन बजात खुद नरी लगा अपॉर्चुनिटी खची को जिसके अंग में टाइम मत मैंने दुनी लास्ट बार टाइम मचा दे रहा जरना गस दक्षन नरी यरा गुंदा डीसी साहब अस्तास देंगी दक्षन फैक्ट्री यरा सो सो तो नी दना मशीन तो गस ऑटोमेट बस जो है दक्षन नी लगा वर्कर अगर का तो मत नरी गस सी बात मशीन पे डिजाइन तंग संगा छचिन दे गा कैमरा तकसुद मशीन पे चौका का मूवमेंट का बंद छचिंगा मोबाइल पे मैसेज हो जो है कि आपका मशीन ही मूवमेंट पे बंद हो सो जरे छना दे गा ऑटोमेटिक स्विच तकसुद दे गा चौक से गास दे मशीन
0: खमा दुख से बंद भाई जी
1: खमा दुख से खमा बस गा दिल्ली घर दुनिया दिखा कुना चंसों से गा बंद भाई जी

0: ओना बैंकिंग छिन बना बैंकिंग छिन
1: इंटरनेट ने कनेक्ट बस
0: इंटरनेट ने कनेक्ट छला
1: छना
0: ऑटोमेशन तो चला ता बस बैंकिंग छिन
1: टेक्नोलॉजी इस्तेमाल दमो बस बस तिन सुबे नति समप सु सा यों से यदि गलत सब नंग दिख जाते
0: सब नंग दिख जाते नि लगा यों से यंत ना बो को प्रो लास बे जर्नरी नि जर में मकसद पुदु इन की यंत किताबी कीड़ा लने मन मतलब किताबी न किताब
1: न बहुत कुछ
0: या ना प्रैक्टिकल छार गोस दे प्रैक्टिकल लास बने यार पता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत कुछ जों छिन प्रॉब्लम यमन ओते का गतस ची बार वशा तो देगा संबतन से देगा लास बना गता नति बना देना माशिरा मन बहुत सारे आईडिया पे गता लास बन चतु
1: हमर सब ता टाइम पर प्रोग्रामिंग गता टाइम पर कुलिया लजुगा लेबे स्टाफ सों जु छाना टाइम पर संगता इजाजत ता मिनु छाना हमर सब लद्दाख कारवी फ्यूचर प्लान पुछिन जु पहला ना छाना आखिरी सवाल दूसरा एरेस की यरा अच्छी थ नति लोकल एंटरप्रेन्योरशिप ngati ladakh hi jyuti janin economy sustainable chargos chana ladakh economy na cultural identity nisko ngembo jakse lasbao ngati entrepreneurship bi role puchi thonge aur ladakh karwi future plan puchi
0: ladakh karwi jaise ki ngas dakhsan ka tun achas di momento ngati dakhsan yara za nashi momento chukse ngachas chukse nuk soma design ngachas chuno ju soma design ngachas survey bende designing sa ngachas las bende ya ju ngati dakhsan tile ngati stikpa sa tile tang de ju kashmir ne
1: shi tile bhai ju bilkul
0: bilkul shi tile po du ngati ju khachun lakhu du ngachas di ngati traditional design dakhsan ngati rgena khchangri zer ya ju ngati dakhsan di ka yara zer na infinity loop zer ngati nurbu zer dun kula kula dakhsan ngati maashiran bahar na odar tile ni ocha dakhsan ngati culture bu kula store in sons yara zer na har jaga yara dakhsan tos ngat nang sanga chana ngati rgena khchangri zer nurbu zer ya ju ngati infinity loop zer odune nok man na dukde ju dune reason dukde the design on the so min dukde matlab the so
1: chana bilkul ju dhyan chiche de infinity loop jakhan bangata ngati kargil pehla masjid panje ju as tanku masjid pang
0: बहुत सारे रीजन दुख छा बाहर ही डिजाइन बसे कल्चर स्टोर ngachas koshish basin daksan ode culture ngati design un yang dobara zinda be phi
1: preserve
0: be phi yang dobara ngati danan kyun se duniya ngachas ang somar design tang se duniya ngati last be ngachas duniya nu koshish basin jo chana ngati da duna ngati da vestige ngati wood sak chinu chude jo ya कार्विंग बस एक्सपोर्ट बनाना चुली भूरी पूरा अति करगिल सुई लगा चुली और नंग सस्टेन छचा दुख देखो
1: इकोनॉमी बड़े
0: इकोनॉमी माने बड़े छचा दुख छान अति में सन दक्षिण यो में दर अति यो में एंटरप्रेन्योर सगस देना हुरी क्लास में नंगा ने बको प्रोड बस देना क्लास में इच्छा सुंदे जो है एक एक ग्रुप ची सुन से अति चुली सी ना मल चंगा सी का कोस दो प्रोडक्ट छ छ बस चो जिन नंगा जर्सिन कोस जर्सिन दुदु सोचो छिन दी अति दी डिजाइन बता से छान नंगा ने एक माने पूरा मा आशेरे माने टीम ची टीम जिंदा
1: लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट हर जगह नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सबसे डीसी साहब अस्ते दिल शुक्रिया जिंदगी सर चिंगा जिंदगी मैंने मथुम की एक डिस्ट्रिक्ट दुख से नाची होते मामूली से यूनिट यों से यहाँ तक अस्क्यों रस दूसो विजिट बस छा आता एक एंटरप्रेनरशिप आता एक हौसले की ओं दुख आता यहाँ ताकत की ओं
1: दुख
0: आती माशरा दुखते शिंगला जर या मतलब गाला शिव मामूली समय दुखते छा उस मतलब छो ओहदा करते गए खन का तुम आती अस्क्यों आता इनकोरेज बना है आता समय दो है भाई गारी लास पुंग लाश इन चुक छा यंती दिस्त्रो लिए डीसी साहब बाकी देखा उसके खान बाकी में अफसर सागंस अस्ते है दिल शुक्रिया जरा देते थे आज वाला माशरे उसके होते नती दे लाज बखनुल्ला इनकोरेज बस खान हौसला तंग से तो कतबन नती रियासत में या रियासत में चाहे तो पहुंचे बख्शीस
1: बख्शीस अहमद साहब यारंग तम बिजना इन सुक देते गेरे सिले एम टेक बस अपना यारंग एंटरप्रेनरशिप इज लूम पेंसों से मीमांसला रोजगार तंग मिजरीक दने यारिस दिसिक लाज बस यारगेस क्यों मैं कोशिश बस नहीं सुनाती लड़ा हा छह ना यारंग यों से नाती मिमांग सुल्ला नाती रेडियो न्यान खान तखान ngati mimang sulla jawanun la

दरअसल पयंते समस्त के गंगे निन्यत पिन मीडियम वीवी का आचे साकाश पानी कारगिल ना सिरिन्यत ये ले प्रोग्राम यन खनों वक्स बहुत सनी तो सो तुष्य संसुक नची देरिंग प्रचुपायत पी प्रमाचिक प्रोग्रामी वक्स बहुत हमाथुन अस्केंगे में तो सच्चुंग सी का आचा यां यंति दुनुकले बुक त्यामन पूंगा चाहिए निशाज देबो सी एजू खुदा नार सखमानी फकरें वस्सलाम।